0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
1: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
0: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
2: GG.
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM ऑनवर्ड्स CSE ऑडिटोरियम टिसेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
4: फ्रॉम एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 8 बजकर हो चुके हैं कि इस मिनट रेडियो मस्ती 24/7 अंतरा आपके साथ। गुड मॉर्निंग एंड यहाँ पर चल रहा है द मॉर्निंग शो। और सुबह सुबह जो है बिल्कुल आपके वीकेंड का अगर प्लान बता दे तो फिर आप कहोगे कि इससे तो बेहतर कोई बात ही नहीं हो सकती कि मंडे को ही हम वीकेंड की बात करने लगे। वेल दिस सैटरडे सिंगापुर में एक ऐसी शाम होने वाली है जो पहले भी हो चुकी है। इट हैज बीन ऑलवेज अ सोल्ड आउट शाम बिकॉज वी ऑल नो व्हेन एवर दिस नेम कम्स अमित धमेलिया जी, वी नो दैट जब भी हम इस लाइव शो में जाएंगे और वहां पे उसका हिस्सा बनेंगे वी विल ऑलवेज ऑलवेज हैव अ रियली गुड टाइम। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया। परम स्वरम आर्ट जो है वो लाते हैं। दो एडिशन ऑलरेडी हो चुके हैं, दिस इज द थर्ड एडिशन एंड देर इज समथिंग न्यू ऑल्सो which they are saying कि इस बार करने वाले हैं। So well, if Sufi music is your thing, वो music जो आप सुनते नहीं हो, जो आप feel करते हो, then this one need to be one of your weekend plans, right? भाई soulful vocals के साथ Sufi flavors and live music and that whole atmosphere जहाँ पे after a point you forget कि भाई I am not here, maybe. Masti Media Network as the digital media partner by Ishq Sufiyana jo hai is happening 26th of September, Saturday ko 7 baje se 9 baje tak Civil Service Club ke auditorium mein Tessinson Road par jo hai. Now tickets are priced at $60 and $80 and yes, bilkul, if you are planning to go, get those tickets sorted before it's all sold out. बस आने ही वाला है एंड बाद में आप कहो कि यार जाना तो था तो वो उस पे मत छोड़िए। फॉर टिकट्स यू कैन पे नाउ टू 8138279 0। आई विल रिपीट दैट वन मोर टाइम 8138279 0। सो यू कैन गेट योर फ्रेंड्स, गेट योर फैमिली और मे बी जस्ट टेक योरसेल्फ आउट फॉर अ ब्यूटीफुल इवनिंग ऑफ म्यूजिक। इश्क सूफियाना, बिल्कुल इश्क हो, सूफी हो और सैटरडे इवनिंग हो, आई थिंक परफेक्ट। गुड मॉर्निंग।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: It's a musty partner event.
2: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides, and lucky draws. All to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330251.

0: Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: Well, this one is on the 27th. So as you see that आपका वीकेंड हम बिल्कुल सेट कर चुके हैं आज से ही. रेडियो मस्ती 24/7 पर जी हाँ तो आपके साथ दिस इज द मॉर्निंग शो. 8:36 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में एंड लेट्स मूव टू इटली इन नाउ. एंड दिस इज वन ऑफ दो स्टोरीज जहां पे हेडलाइन जो है नीड्स अ लिटिल बिट मोर एक्सप्लेनिंग, क्योंकि यहाँ पे तीन अलग अलग प्रपोजल्स जो है डिस्कस किए जा रहे हैं. इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने अनाउंस किया कल दैट हर गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग न्यू रूल्स फॉर स्कूल्स फोकसिंग फॉरेन स्टूडेंट्स पे, लैंग्वेज पे एंड फेस कवरिंग्स पे. सबसे पहले तो इटली वांट्स टू इंट्रोड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ foreign students allowed in an individual classroom. Now, kitna maximum? That number has not been announced abhi tak. Unhone kaha that the measure will be presented to the cabinet. So, at this stage, it's a proposal and not an existing law. Unka argument is that if a classroom has a large number of children who don't understand Italian, integration and language learning becomes more difficult. For some context, students jo hai, who are not Italian citizens currently make up to 11.6% of enrollment in Italian schools. So roughly 12 out of every 100 students. Now, another interesting part is, Mickey, under the proposed measure, parents of foreign students who are having serious difficulties integrating school ke system mein, it could also be required to learn Italian. And then comes the part that's getting a lot of attention internationally. Unhone kaha that niqabs jo hai, they would be banned in a school, meaning the coverings jo hai that conceal the face, ho sakta hai ki ye ban ho jaye aage chalke. Aur ek clarification zaruri hai because some headlines are saying hijab as well. The proposal announced by Meloni specifically refers to the burqas and the niqabs. She did not mention anything banning the hijab. So, unki position is that the students should attend school with their faces uncovered. And the measures are being presented by her government as a part of approach to integration and Italian language and cultural norms. Of course, migration and integration, ye jo hai, politically contentious issues hai, Italy ke. So, yeah. हर जगह से और कहाँ क्या चल रहा है सब कुछ जानना काफी काफी जरूरी है. सो वेल अब देखते हैं फाइनल लेजिस्लेशन एक्चुअली किस फॉर्म में आता है वंस इट मूव्स थ्रू द इटालियन पॉलिटिकल प्रोसेस. बट व्हाटएवर इट इज आई थिंक हम है ना टू कीप यू पोस्टेड विद एवरी सिंगल थिंग अलोंग विद द गानास व्हिच आर कमिंग अप फॉर यू. एंड बस थोड़ी ही देर में मैं भी आती हूँ ट्रैफिक का अपडेट लेकर. गुड मॉर्निंग.

0: ट्रैफिक अपडेट। द मॉर्निंग शो की हवेली तो सुबह 7 बजे से खुली हुई है और अंत रहे आपके साथ, फिलहाल वो आपको देने वाली है यहाँ पे इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। 8:41 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। ट्रैफिक का अपडेट जो है कुछ ऐसा कहता है, व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन SLE टूवर्ड्स BKE आफ्टर अपर थॉमसन रोड। हैवी ट्रैफिक की खबर इन CTE टनल टूवर्ड्स AYE एट हैवलॉक रोड एग्जिट, और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन AYE टूवर्ड्स टूअर्स एट PIE एग्जिट। वेल ये इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, शफकत अमानत अली की आवाज। एंड दो ये मूवी उतनी ज्यादा नहीं चली, बट स्टिल आई थिंक द सॉन्ग्स वर प्रीटी नाइस, इंक्लूडिंग दिस वन एज वेल। गुड मॉर्निंग
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: खाओ।
1: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: दिस नवरात्रि सीजन स्किप द ट्रेडमिल बिकॉज द बेस्ट काइंड ऑफ कार्डियो कम्स विद डांडिया स्टिक्स। वी इंडस्ट प्रेजेंट फॉर बॉलीवुड डांडिया नाइट, where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
4: Suat!
3: Join Kariyanka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210.
5: Chhora ganda thai gaya!
3: Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.

क्विकली इस घंटे को रैप अप करने से पहले एक स्पोर्ट्स सेक्शन पे नजर दे देते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ यहाँ पर चल रहा है द मॉर्निंग शो, एंड व्हाट अ डे इट हैज बीन फॉर इंडियन विमेंस क्रिकेट एट द एशियन गेम्स। स्मृति मंदना जो है इज नाउ ऑफिशियली द हाईएस्ट रन स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। शी वेंट इन टू इंडिया का सेमीफाइनल अगेंस्ट बांग्लादेश, नीडिंग जस्ट 7 रन टू ओवरटेक न्यूजीलैंड लेजेंड सूजी बेट्स, एंड थर्ड ओवर में ही बाउंड्री के साथ record was broken. By the time Smriti was dismissed, she smashed 37 off just 19 balls, taking apne career ka tally to 4,788 T20 international runs from 171 innings. Susie Bates ka previous record tha 4,758. And ek record bana ke Smriti ne socha, apparently chalo ek aur milestone bhi saath saath mein cover kar lete hai. So during the same innings, she also reached 100 sixes in T20 internationals. But yesterday was not only about Smriti Mandhana. At the other end, Shefali Verma went absolutely ballistic. She scored her maiden T20 international century, an unbeaten 100 from only 49 balls, including 9 sixes. India finished on a massive 195 for the loss of 4. Bangladesh were then bowled out for just 81 in 50.4 overs. Result, as you can already, gauge, India won by 114 runs and marched straight into the Asian Games ka gold medal match. And wahan pe kaun intezaar kar raha hai? Sri Lanka. Sri Lanka ne beat kiya Pakistan ko by 8 wickets in their semi-final. So it's going to be India versus Sri Lanka for Asian Games ka gold. So well, let's keep our fingers crossed. But somehow I have a confidence. आपको नहीं लग रहा? मुझे तो बात करते हुए ही लग रहा है. Well, मान मेरी जान कि कभी-कभी ये gut feelings ना, हम कभी-कभी नहीं, most of the time सही ही होती है. Cheering for Team India, absolutely, and wrapping up this hour with Kinka, ये गाना. Good morning.

0: टू स्टेट्स के साउंडट्रैक से दैट वाज अरिजीत सिंह की आवाज एंड इनकी आवाज में तो हम वैसे भी कभी भी मस्त मगन हो ही जाते हैं। पहुंच चुके हैं 9 बजे के उस पर। गुड मॉर्निंग नमस्ते। रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है यहाँ पर द मॉर्निंग शो। मैं अंश यहाँ पर आपके साथ। चलिए मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नाउ। भाई नॉर्थ कोरिया जो है इज बैक इन द हेडलाइंस। आज की सुबह नॉर्थ कोरिया फायर्ड टू शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स इन टू द ईस्ट सी कल की डेट में रफली 3 hours अपार्ट। अकॉर्डिंग टू साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बोथ वर लॉन्च्ड फ्रॉम द वोनसन एरिया ऑन नॉर्थ कोरियाज ईस्ट कोस्ट एंड द फर्स्ट वॉज डिटेक्टेड एट अराउंड 3 PM एंड ट्रेवल्ड अप्रॉक्सिमेटली 450 kilometers। फिर दूसरा शाम के करीबन 6 बजे अ सेकेंड मिसाइल वॉज लॉन्च्ड एंड दिस वन ट्रेवल्ड more than 600 kilometers before coming down in the sea. So naturally, South Korea mein immediately monitoring and vigilance jo hai badha di gayi hai. South Korean and US intelligence tracked the launches from the beginning and shared information with Japan as well. Now, Japan ne kaha the missile it detected appeared to have landed outside its exclusive economic zone and there were no reports of damage there. Now the timing is important. Just 2 days before North Korean leader jo hai, unki jo behen hai, and a senior official had criticized the US-led Pacific Vanguard maritime exercises near Guam and said North Korea would continue strengthening its nuclear deterrent as well. Pyongyang jo hai, has repeatedly described US-led military exercises involving South Korea and Japan as threatening, and US and its allies described such exercises as defensive. And this was not an isolated launch either. North Korea jo hai, had fired several short-range ballistic missiles on September 12th. So Sunday ke launches were its second round of ballistic missiles testing in just over a week. Well, emergency meeting jo hai bilkul bulai gayi and called on Pyongyang to stop the launches, saying ballistic missile tests violate UN Security Council resolutions. So well, North Korean state media jo hai wo rahe silent about ye launches. Usually ये details release करते हैं after the test and all, but इस बार अभी तक कोई खबर ऐसी नहीं आई है. So two missiles about 3 hours apart, 450 and 600 kilometers traveled, and once again tensions on the Korean Peninsula are something we'll be keeping our eye on the morning show at least. चलिए moving on to हमारा अगला break and a गाना on the morning show.
1: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
2: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत, ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
0: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7। जोश में रहो।
3: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
4: मस्ती पार्टनर इवेंट।

0: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus presents Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
1: Suat.
0: Join Kariyanka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
2: Healthy khao, protein khao.
3: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Shaam ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
2: Healthy khao, protein khao.
3: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
4: GG.
3: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
4: GG Mart, your personal grocer.
5: And that's right भाई, 25 सितंबर तक यहाँ पर जीजी मार्ट का जो है कमाल का एक तो रोड शो चल रहा है एंड कमाल के ऑफर्स भी मिल रहे हैं. 9 बजकर हो चुके हैं 17 मिनट. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ एंड यहाँ पर मॉर्निंग शो पे चलिए आपको एक शॉपिंग अलर्ट दिया जाए. अगर आप कहीं पे इफ यू आर गोइंग अराउंड नोवीना, जीजी मार्ट हैज दिस मिड ऑटम फेयर हैपनिंग राइट नाउ एट वेलोसिटी एट नोवीना, राइट इन फ्रंट ऑफ केएफसी कियोस्क नंबर 12 है इनका. एंड आई हैव टू टेल यू अबाउट द ऑफर बिकॉज ये सुनते ही मेरा बार्गेन लविंग दिमाग जो है ना एक्टिवेट हो जाता है एंड इट इज everywhere all the time. They have got Krishival premium nuts and dry fruits, cashews, almonds, cranberries and assorted varieties. And during a road show pe aapko mil raha hai buy two get one free. Isn't that fantastic? We all love this one, right? Ab festive season jo hai wo hi chal raha hai, so whether you're looking for something for the house ya something to take when aap apne friends ke yahan pe jane wale ho ya fir khali haath jana acha nahi lagta gifting moments, nuts and dry fruits are the ones जो जस्ट परफेक्टली फिट करते हैं इस पूरे सिनेरियो में. सो वेल, जीजी मार्ट का जो रेंज है इट्स एब्सोल्युटली केमिकल फ्री. इनके प्रोडक्ट्स जो है इट्स बेस्ट फॉर फेस्टिव गिफ्टिंग एंड फैमिली के गेट टुगेदर्स फॉर पीपल लाइक अस एज वेल. हम ऑफिस आते हैं और हमारा जो स्नैक बार होता है उधर आजकल क्रिशवल के नट्स ही पाए जाते हैं. सी हेल्दी. वेल, एक बार और याद दिला देती हूँ, 25th ऑफ सितंबर तक इनका है वहां पर कियोस्क 12 पे वेलोसिटी एट नोवीना स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ केएफसी. And the deal? Yeah, buy two, get one free. वैसे भी nuts waste तो होते नहीं है, तो एक बार जाके check जरूर कर आए.

Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir? Bhajan Baithak. जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और

बिल्कुल, एक लाइव और एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं. दैट इज करेक्ट भाई. बैकस्टेज सिबलिंग्स जो है वो हमारे साथ होंगे. एंड यस, वी आर गोइंग टू आस्क देम ऑल दोस क्वेश्चंस जिसके बारे में एटलीस्ट मैं तो क्यूरियस हूँ. बट मेरे अलावा आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो क्यूरियस अबाउट दैट व्हाट दे प्लान टू गेट एंड कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, हाउ दिस मैजिक हैपेंड एंड या वॉट दे आर लाइक गियरिंग अप फॉर जो ये सिंगापुर में आने वाले हैं. सो वेल, आज शाम को बिल्कुल 6:30 बजे मस्ती AVI पर भूलना नहीं है, सबको बिल्कुल देखना है. एंड फील फ्री टू आस्क देम वॉट एवर क्यूरियस क्वेश्चन यू हैव एंड शावर देम विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, दैट इज फॉर श्योर. और क्या पता शाम को जब वो दोनों आए तो वो भी एक टिकट लेकर आए जीतने के लिए. सो यू स्टिल गॉट चांस, इजंट दैट फैंटास्टिक. सो शाम को 6:30 बजे मस्ती AVI पर भूलना नहीं. और कितनी कमाल की बात होगी ना कि अगर राघव प्राची अगर कोई टिकट देने वाले हो और वो आपको मिल जाए, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अमेजिंग. वेल, यू हैव टू बी देयर, दैट्स ऑल. एंड यू हैव टू शावर योर लव, that's all, an answer if they ask. फिलहाल चलते हैं ट्रैफिक की और अपडेट कुछ इस घंटे का ऐसा कहता है. व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन PKE towards Woodlands before Dairy Farm Road. व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर होने वाली E towards to us after Lower Delta Road and मिलेगा व्हीकल ब्रेकडाउन ऑन BKE towards PIE after Mandai Road. Avoid करें lane number 4. Well, ये था ट्रैफिक अपडेट. Coming up next is मिलेगी आज किस किस को टिकट जीतने को मिलेगी, वी शैल नो. बट फिलहाल इस गाने के बाद टेक अपडेट मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर ऑन द मॉर्निंग शो.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: It's 9:35 by the studio clock. Radio Musti 24/7 पर अंतराप के साथ यहाँ पे चल रहा है द मॉर्निंग शो. भाई टेक का अपडेट लेते हैं. एंड ऑस्ट्रेलिया इज बेसिकली टेलिंग बिग टेक, टेक्नोलॉजी आपकी है बट रूल्स आप डिसाइड नहीं करोगे. और मेरा गला उसी के साथ साथ जो है मुझे कुछ और ही अपडेट्स दे रहा है, बट आई होप इट शुड बी फाइन. भाई ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज जो है ही

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.

0: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus presents Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood come music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
1: Suat.
0: Join Kariyanka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
2: And yes, that season is almost here. मैंने कहा ना ये जो second half of the year होता है ना ये एक बार शुरू होता है and the festivity it just never stops. We completely love it. बस अभी गणपति बप्पा मोरिया करके हम निकले ही थे कि अब नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों से डांडियों की गूंज के साथ शुरू हो गया है and we in this का बॉलीवुड डांडिया नाइट we all know how epic and how amazing it is. This time it is happening 10th of October को शाम को 6 बजे से खाल एसोसिएशन बिल्डिंग सिंगापुर में टिकट्स जो है वो अडल्ट के लिए $36 चाइल्ड 7 to 12 के बीच में $15 एंड 6 year एंड ब्लो जो बच्चे हैं एब्सोल्युटली फ्री भाई ग्रुप डिस्काउंट भी मिल रहा है ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट व्हाट्सएप करें इनको 9022-1210 पर 9022-1210 पर एंड आई थिंक इट इज अमेजिंग बात ये भी है कि इससे पहले कि मैं यहां से खिसकू और आपको बोलू आई थिंक एक मौका तो सुबह सुबह भी मिलना चाहिए जस्ट टू मेक द मंडे मॉर्निंग एब्सोल्युटली पूरा एक सर्कल में वापस आ जाएगा ऑल यू हैव टू डू इज मैं आपके लिए एक यहाँ पे छोटा सा म्यूजिक पीस बजाने वाली हूँ टेल मी इफ यू नो द सॉन्ग एंड बिल्कुल सेंड मी द आंसर्स 9158963 पर हियर यू गो पता है ना नहीं एक बार और सुनना है चलिए एक बार और सुनते हैं If you know what song this is, फटाफट से मुझे लिखते 9158963 पर एंड यस क्या पता कि आज की डेट में वी इंडस का ये बॉलीवुड डांडिया नाइट का जो है जीत आपके हाथ लग जाए वेल इसी बात के साथ मुझे फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत बिकॉज मुझे यहाँ से निकलना है और उसके बाद जो है हमारी अमुक्ता जो है वो यहाँ पर हाजिर हो जाएंगी एंड देन शाम को वापस से मस्ती वॉइस आपकी चॉइस पर मुलाकात होगी नॉट ओनली दैट वी हैव आवर मस्ती AVI session as well with the backstage siblings. Lots to look forward for. Make sure that you watch the Masti AVI. Make sure you shower lots of love to them and make sure that, yeah, you just stay with us 24/7 because we are with you 24/7. Have a great day ahead. Bye-bye and take care.

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे
2: पुरुष ही नहीं महापुरुष है महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
3: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
4: ऑल इज वेल।
3: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
5: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
6: चेक।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
3: आई लव यू रसना,
2: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, Masti 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Masti 24/7 Live.
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
5: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेस आएंगे. फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हेलो सिंगापुर, हेलो हेलो हेलो, अ वेरी गुड डे। आपने ट्यून इन किया है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूँ मुग्धा और शुरू हो रहा है आपका अपना मस्ती हैंगआउट। एक बात बताइए, अगर वीक डेज इंसान होते, अगर होते ना, तो फ्राइडे आपका वो दोस्त होता जो आपसे कहता चलो कुछ करते हैं, तूफानी मस्त प्लान बनाते हैं। सैटरडे वो दिन होता जो बिना पूछे आपके घर आ जाता। संडे वो होता जो कहता यार थोड़ी देर और बैठते हैं ना। एंड मंडे, मंडे वो बंदा है जो सैटरडे संडे दोनों रातों को आपको मैसेज करता कि हमें मंडे को मिलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह मिलेंगे। यस, अरे भाई मिल लेंगे, इतनी क्या जल्दी है। अब मंडे आ ही गया है तो अब इसी के साथ थोड़ी दोस्ती कर ही ली जाए मंडे के साथ, है कि नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन इन किया है। आप सुन रहे हैं मंडे को मस्ती हैंगआउट मुग्धा के साथ, इस नए हफ्ते का पहला दिन और पहला शो। अब अगले 3 घंटे मैं आपके साथ हूँ, राइट। बातें होंगी सिंगापुर की, होंगी बॉलीवुड की, होंगी कुछ ऐसी जिनको सुन के आप कहेंगे वो वाओ दैट्स स्ट्रेंज, कुछ ऐसी जो आपके सिंगापुर के हालचाल आपको बताएंगे, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये आपको बताएंगे। नहीं, नहीं जाना के बारे में मैं नहीं बताऊंगी, कहाँ जा सकते हैं ये जरूर मैं आपको बताऊंगी। तो अब आप चाहे कम्यूट कर रहे हो, चाहे काम में बिजी हो, चाहे घर पर अपने रेडियो को लेकर बैठे हो, बस

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
3: जीजी
2: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
3: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, वेलकम बैक एंड टेल मी वन थिंग। जब हमारा शहर, हमारी सिटी किसी ग्लोबल रैंकिंग में टॉप पे आती है तो वो खबर एकदम जगल में आग की तरह फैल जाती है ना। फैमिली ग्रुप में फॉरवर्ड होता है, ऑफिस में डिस्कशंस हो रहे होते हैं, हर कोई उस बारे में बात कर रहा होता है। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से लेके जुबान की पहली लाइन यही खबर होती है, दैट्स सिंगापुर, है ना, प्राउडली बोलते हैं। लेकिन जब रैंकिंग नीचे आ जाए तो हम इतने इंटरेस्ट के साथ उस बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। हेडलाइंस देखकर ऐसे आगे बढ़ जाते हैं, हाँ ठीक है, क्रिटिसाइज करते हैं, दो चार तरह की बातें सोचते हैं, एंड देन वी मूव अवे एंड मूव फॉरवर्ड। अब देखिए 2026 की ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में सिंगापुर ग्लोबल टॉप 10 से बाहर हो गया है। यस, ग्लोबल टॉप 10 से सिंगापुर इज आउट, 29th पोजिशन पर है, लेकिन एशिया में अब भी सेकेंड पर है, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में दुनिया में हम थर्ड हैं। तो पिक्चर में सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस, रिपोर्ट में एक्सपेंसिव हाउसिंग और एजिंग पॉपुलेशन जैसे चैलेंजेस जो है वो सामने आ रहे हैं। ये रिपोर्ट्स आपको ये भी बताती हैं कि आप क्यों इधर उधर हो रहे हैं, एंड ये वो बातें हैं जो सिर्फ रैंकिंग तक लिमिटेड नहीं रहती हैं, हमारी डेली लाइफ और फ्यूचर प्लानिंग से जुड़ी होती है। मुझे लगता है सिंगापुर के अचीवमेंट सेलिब्रेट करना बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन जहां पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, जरूरत है, उस पर बात करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है, और उससे हमारा प्राइड कम कहीं नहीं होता। इनफैक्ट अगर हम बात नहीं करेंगे तो अपनी इस नाक को और ऊंचा कैसे करेंगे, है कि नहीं। और मंडे को ये बात और भी ज्यादा रिलेटेबल लगती है। ऑफिस में भी ना बॉस आपको सिर्फ वैसे बोले ग्रेट जॉब, वैसे सुनना कितना अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको समझना भी जरूरी है। या अगर आपको कोई ग्रेट जॉब ना बोले और आपको लगे मैंने काम तो बहुत अच्छा किया है, किसी ने कुछ कहा नहीं क्या, अगर आपको हर हफ्ते ग्रेट जॉब सुनने सुनते सुनते सुनते अचानक से आपको कोई नहीं बोल रहा है, तो इस बार में बात होनी चाहिए।
2: तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के।
1: शहर से प्यार है तो उसका सक्सेस अपना है और उसके चैलेंजेस भी अपने हैं। मैं हूँ मुग्धा, आप सुन रहे हैं मस्त हैंगआउट, स्टे कनेक्टेड।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: यूपी मंडे को एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी लगती है मुझे, ऐसे प्लान्स जहाँ पे आपको कुछ मैनेज ना करना पड़े, ना कोई डेडलाइन, ना कोई डिसीजन, ना कोई पंचिंग, ना कोई आउटिंग, ना आने का तो टाइम है, पहुंचना है, पहुंच के जाना है, गाना है, नाचना है, एंजॉय करना है, घर आ जाना है। ऐसे प्लान्स तो मैं भी अपनी जिंदगी में चाहती हूँ, और चूंकि मुझे पता है तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप सोच रहे हैं यार ऐसा होता है क्या कहीं पे, ऑफ कोर्स होता है, एक काम करिए, हमारे मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर के फेसबुक पेज पे जाइए एक बार, फिर आपको पता लगेगा जिंदगी कितनी कमाल की है। जब आप देखेंगे बैक स्टेज सिबलिंग्स के वीडियोस, ओ माय गॉड, दे एंजॉय एंड दे मेक पीपल एंजॉय, तभी तो उनका जो एक मोटो है ना कि स्टेज इज द ऑडियंस, वो बिल्कुल सही है। प्राची और राघव की जोड़ी जो है ना, जब वो म्यूजिक शुरू करते हैं तो सिर्फ दोनों नहीं गाते हैं, पूरा रूम, पूरा स्टेज, पूरी ऑडियंस उनके साथ गाती है। कोई क्लैप कर रहा होता है, कोई झूम रहा होता है, एंड देखते ही देखते माहौल ऐसा बन जाता है कि आपको स्क्रीन के इस तरफ भी ज्वाइन करने का मन करने लग जाता है। सोचिए वीडियोस में इतना मजा आ रहा है देखकर, तो लाइव बैठक जो वो लेके आ रहे हैं उसमें कितना मजा आएगा। 26 सितंबर शाम 6 बजे एंगेज थिएटर 2 सनटेक, यहाँ पे आपको मिलेंगे बैक स्टेज सिबलिंग्स। भजन बैठक है इनकी, भजन, सूफी फेवरेट्स, वो गाने जो आपको आपको भी साथ में गाने पर, गुनगुनाने पर, झूमने पर मजबूर करेंगे। टिकट्स आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन सिस्टिक, और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, द नंबर इज 9866-7144। समझे? और हाँ, एक सवाल है, अगर आपने इसका जवाब सही दिया तो आप टिकट जीत सकते हैं इस कॉन्सर्ट का, लाइव टिकट। कौन से मंथ में है ये भजन बैठक, सवाल का जवाब दीजिए और टिकट ले जाइए। ऑप्शन ए है सितंबर, ऑप्शन बी है दिसंबर। ये भजन बैठक प्राची और राघव की, ये कब हो रही है, आते महीने सितंबर में ऑप्शन ए, या दिसंबर में ऑप्शन बी।

0: जल्दी से बताइए एंड स्टे कनेक्टेड.
1: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक. जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर. भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची. गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक. 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर. भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स. टिकट्स ऑन सिस्टिक. बुक नाउ. फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144.
2: It's a Masti Partner event.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: दुकान खोलने में घंटों लग गए और शटर 2 मिनट में डाउन। डाउन। अरे मैं किसी शॉपिंग मॉल की बात नहीं कर रही हूँ, ये हाल होने वाला है ऑनलाइन स्कैमर्स का, राइट? सिंगापुर आपने नोटिस किया होगा, कभी पार्सल डिलीवरी के वक्त में डिलीवरी के नाम पर आपके पास मैसेज आते हैं, कभी आपके बैंक अकाउंट के नाम पर आपके पास मैसेजेस आते हैं, इसको अपडेट करो, इसको ये करो वो करो, एंड कभी ऐसे ऑफर्स आते हैं आपको देखकर लगता है यार इतना सस्ता, तो दिमाग में से घंटी बजती है कुछ तो गड़बड़ है। अब इन फेक वेबसाइट्स पर एक्शन और ज्यादा तेज हो गया है। सिंगापुर पुलिस की नई साइबर कमांड जो है ना, उसके थ्रू स्कैम साइट्स को बंद करवाने का जो प्रोसेस है वो जो पहले घंटों लेता था, अब कुछ केसेस तो मिनटों में बंद।

0: मतलब स्कैमर्स ने वेबसाइट बनाई, लिंक भेजा, पुलिस ने कहा हेलो खेल करा। लेकिन जरा ये एक नंबर सुनिए, इस साल के पहले 6 महीनों में सिंगापुर में स्कैम विक्टिम्स ने $410 मिलियन से ज्यादा खो दिए। पुलिस ने इस दौरान 52,000 से ज्यादा मैलिशियस वेबसाइट को डिस्ट्रक्ट किया है। मुझे एक बात बताइए, पुलिस तो स्कैम जल्दी जल्दी बंद कर सकती है, लेकिन हम अपनी क्यूरियोसिटी का बटन क्यों नहीं बंद करते, ये जानते हुए भी कि दिस इज जस्ट टू गुड टू बी ट्रू, हम उस रूप पे क्यों क्लिक कर देते हैं? क्यों क्यों क्यों जानना चाहती हूँ मैं। द नेशन वांट्स टू नो। नो नो नो नो नो नो नो।
1: मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सुलगते से।
0: स्कैमर्स को मंडे ब्लूज देते हैं, दिया जाए। दे दीजिए, अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस मत दीजिएगा बस।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्त रफ्त देखो, आंख मेरी लड़ी है।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: गाना लॉन्च करना है, अच्छा तो भाई पूरा ऑर्केस्ट्रा बुलाओ। आप कहेंगे आज के जमाने में कौन ऑर्केस्ट्रा बुला के गाना लॉन्च करवाता है, लोग तो रिकॉर्ड भी नहीं कराते आजकल ऐसे। वेल हेलो, वेलकम शो के सेकंड आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुग्धा आपके साथ और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट पर। सिंगापुर बॉलीवुड में आजकल गाने का टीजर आता है, फिर टीजर का टीजर आता है, फिर रील आती है, लेकिन हिमेश रेशमिया ने डिसाइड किया है कि इस बार प्ले बटन नहीं दबेगा, पूरा स्टेज बजेगा, मतलब चाहिए हमको। वेलकम टू आर2 और यहाँ पर शुरुआत होगी हिमेश जी से। आयुष्मान खुराना और शर्वरी की एक मूवी आ रही है जिसके बारे में हर कोई जानता ही है, ये प्रेम मोल लिया। अब इसका टाइटल ट्रैक जो है वो लॉन्च होने जा रहा है ऑन 20 सितंबर को मुंबई के रॉयल ओपेरा हाउस में। हिमेश भाई ने 25 म्यूजिशियंस के लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म करके इसको लॉन्च करने का डिसाइड कर लिया है। अब सोचिए, एक तरफ हम एयरफोन्स में गाने सुनते रहते हैं और एक तरफ 25 म्यूजिशियंस एक साथ उसमें जान डाल रहे हैं, तो मजा ही आ जाएगा। हिमेश ने तो सॉन्ग लॉन्च को एक पूरा कॉन्सर्ट बना दिया और मुझे लगता है यही तो कॉन्सेप्ट है म्यूजिक का। आपके कानों को भाए प्रेम रतन धन पायो, गाना ऑर्केस्ट्रा पे आयो। ओह माय गॉड, आपको बताए इस गाने का एक मीम बड़ा मजेदार है, यू रिमेम्बर करते करते आती है और एकदम से आके दीवार पे चिपक जाती है। वो इतनी दूर ऊपर ये करने आई थी। एनीवे, अब बिकॉज बरजातिया जी की मूवी है तो मैंने कनेक्ट कर लिया। खैर, फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सूरज बरजातिया, आयुष्मान शर्वरी पहली बार साथ में नजर आएंगे। दरस ने आया तुझको, ऐसी हॉट जोड़ी हमें दे दी, वो भी बरजातिया जी की पिक्चर में, साफ सुथरी वाली। 27 नवंबर को सिनेमा हॉल्स में आने वाली है। मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि जब दुनिया शॉर्ट क्लिप्स में, वर्टिकल की दुनिया में जी रही है, गाने भी सुन रही है, बॉलीवुड गाना लॉन्च कर रहा है लाइव ऑर्केस्ट्रा पे। ओह माय गॉड, महफिल बन रही है। बस अब हिमेश जी से एक रिक्वेस्ट है कि 25 म्यूजिशियंस के बीच वो आइकॉनिक नोट जरूर लगाइएगा, वरना ऑर्केस्ट्रा को भी लगेगा हम आए किस लिए थे।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: गा के मैं तो थक गई भाई साहब। चाहे मैं गाऊं, चाहे ऑर्केस्ट्रा वाले बजाएं, चाहे आप घर पे हो, कोई बात नहीं। हम शो के दूसरे आर में हैं। जिन लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया, आप एक चीज तो छूट चुके आपसे, पर कोई बात नहीं, आप सही समय पर आए हैं। आपको पता है गिफ्ट देना है, कुछ ऐसा देना है जो सामने वाले को मतलब अच्छा भी लगे, और कुछ ऐसा जो बस वो ये सोच के ना रखे चलो किसी और को दे देंगे। नहीं, ऐसा गिफ्ट देना है जो वो किसी को दे ही ना पाए, इतना कमाल का। अरे आप समझ रहे ना, फेस्टिव सीजन में क्या होता है, कभी कभी एक ही गिफ्ट बॉक्स इतने घर घूमता है कि घूमते घूमते वो आपके पास आ जाता है। अब ये ऐसा गिफ्ट है जो अगर आपके पास आ जाता है घूमते घूमते, आप तो लकी हो, पर जिसने घुमाया वो उतना लकी नहीं है। बिकॉज ये है मिड ऑटम गिफ्टिंग सीजन। पता है मिड ऑटम सेल है 11 से 25 सितंबर तक जीजी मार्ट की कियोस्क नंबर 12 वेलोसिटी एट नोवेना में। और यहाँ पे क्रिशिवल नट्स की बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन रेंज है। विविड वैरायटीज, ड्राई फ्रूट, सीड्स, गिफ्ट पैक्स, एवरीथिंग। टेस्टी और हेल्दी ऑप्शंस, क्योंकि केमिकल फ्री भी है, इसमें हलाल सर्टिफिकेशंस भी आपको मिलेंगे। प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू पिक फ्रॉम। कृषिफल नट्स के फ्लेवर्ड और क्लासिक ड्राई फ्रूट्स हैं, प्रीमियम फेस्टिव गिफ्ट पैक है, और ये नट्स ना नेचुरल, केमिकल फ्री और हलाल सर्टिफाइड भी है। और सुनो, गिफ्ट पैक लेने जाओ ना तो अपने लिए भी कुछ पिक करके जरूर लाना, क्योंकि जब आप घर आओगे और खोलोगे तो ऐसा लगेगा कि ये घूम फिर के मेरे पास आए, से अच्छा कहीं ना जाए, मेरे पास ही रह जाए। नहीं, तो जो भी ला रहे हो दो लाना, एक अपने लिए, एक गिफ्ट करने के लिए। तो मिड ऑटम सेलिब्रेशन के लिए गिफ्टिंग हो, फैमिली विजिट्स हो, वीकेंड मंचिंग हो, जीजी मार्ट कियोस्क नंबर 12 वेलोसिटी नोवेना जरूर याद रखिए। और हाँ, 25 सितंबर तक ही ये सब कुछ अवेलेबल है, ज्यादा दिन नहीं है, पर अभी भी है वक्त। इससे

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 p.m. ऑनवर्ड CSE ऑडिटोरियम टिसेंसन रोड. टिकट $60 ऑनवर्ड्स. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया.
2: It's a must-be partner event.

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

Golmaal, Golmaal, yes, Golmaal, the gang is back. Golmaal की वापसी. एक दोस्त पागल है तो संभालने बाकी क्या जाते हैं. पूरी गैंग पागल हो तो Golmaal, Golmaal, Golmaal हो जाता है बॉस. सिंगापुर बॉलीवुड से बहुत ही मजेदार अपडेट आ रही है. रोहित शेट्टी ने Golmaal 5 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. 8 जनवरी 2027 मतलब नए साल की शुरुआत में गोपाल, माधव और उनकी पूरी गैंग फिर से सिनेमाज में हंगामा करने आ

0: रही है अजय देवगन, अर्षद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू, बाय गॉड अमेजिंग यार। और सुनो, शर्मन जोशी भी वापस आ रहे हैं गैंग में, इस बार अक्षय कुमार भी आएंगे। अरे भाई क्या कर रहे हो? अब सोचो, जहां पहले इतना कंफ्यूजन था, अक्षय आएंगे तो आई एम श्योर वो सबको कंफ्यूज कर देंगे। रोहित शेट्टी की स्क्रिप्ट के साथ ना ट्रैफिक मैनेजमेंट का अरेंजमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत खिचपिच हो जाती है भाई। वैसे मुझे गोलमाल की एक बात बहुत पसंद है, फिल्म में ना दोस्तों की प्रॉब्लम कभी सॉल्व होती नहीं होती, कभी नहीं होती, बस एक प्रॉब्लम से निकलते हैं दूसरी प्रॉब्लम में घुस जाते हैं। तो हमारी जो रियल लाइफ फ्रेंड्स गैंग होती है वो कौन सी अलग है, वो भी तो यही करती है, जाते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने और उल्टा दूसरे में फंस जाते हैं, और वो तो वैसे की वैसे रह जाती है।
1: सर मैं बोल रही है सर, आपको सुनना पड़ेगा सर, इस बार का गोलमाल बहुत ज्यादा गोलमाल होगा सर। सर सर
0: ये है कि नहीं इस बार के गोलमाल में?

खैर कौन है कौन नहीं है ये पता लग जाएगा 8th of January को. तब तक डोनू बेटा जस्ट चिल. आई नो दिस इज ऑल द बेस्ट. मुझे मालूम है, मुझे सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाँ, इतना गोलमाल, इतना हंगामा और इन सब के बीच में हमें क्या चाहिए? सुकून। तो सिंगापुर एक सवाल है, आपके फोन की प्लेलिस्ट में कोई तो ऐसा गाना होगा जो आप स्किप नहीं कर सकते? ये ऐसा लगता हो कि ऑन किया तो ये पहले सुनेंगे, उसके बाद ही मूड सेट होगा, है ना? वो गाना शुरू होता है और दिल कहता है अरे इसको तो पूरा बजाएंगे और बार बार सुनेंगे। वही म्यूजिक अगर लाइव सुनने को मिल जाए तो मजा ही कुछ और है यार। सिंगर सामने है, इंस्ट्रूमेंट सामने है, फेवरेट लाइंस आते हैं, आपको लगता है बस यही जन्नत है, यही इधर ही। एक ऐसी ही म्यूजिकल इवनिंग आ रही है सिंगापुर में, परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेकर आ रहे हैं इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया ऑन 26th of September शाम 7 से रात की 9 बजे तक, ऑडिटोरियम सिविल सर्विस क्लब टेसेंसन 60। समझ रहे हैं? अब ये जो इवनिंग है ना, इसमें आपको सूफी फ्लेवर मिलेगा, सूफी म्यूजिक का फ्लेवर, सोलफुल वोकल्स हैं, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब आप समझ सकते हैं कैसा डेडली कॉम्बिनेशन है जो आपको सिर्फ आपका मुंह बंद कर सकता है, कान तो खुले रहेंगे आपके, गुनगुनाएंगे पर अपने आपको वहां बैठने से रोक नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से ये फ्रेंड्स या फैमिली के साथ एक परफेक्ट इवनिंग है स्पेंड करने के लिए, जहां इतना कियोस है लाइफ में, हाउ एंड व्हाई टू मिस दिस इश्क सूफियाना, है ना? टिकट्स हैं $60 or $80 सिंगापुर, और बुकिंग के लिए आपको कॉल करना है 8138279 0। आप सीधा पे नाउ पेज पे क्लिक करिए, पे नाउ करिए और अपना टिकट अपने पास ले लीजिए। सो रिमाइंडिंग यू वंस अगेन, परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आ रहे हैं इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: विल यू मैरी मी? हाय, मुझे तो किसी ने पूछा नहीं, पर कोई बात नहीं, रोमांटिक क्वेश्चन है ना ये, कितना ज्यादा। अब इमेजिन करिए कि आप ये सवाल पूछ रहे हो और आपके आसपास शार्क्स तैर रही हो। Oh my God, समझ ही नहीं आएगा हाँ बोलना है कि नहीं नहीं नहीं नहीं, शार्क को दूर रखो, ना बोलना है। एनीवे, बस प्रपोजल है या सर्वाइवल टेस्ट ले रहे हो आप हमारा? खतरों के खिलाड़ी सॉर्ट ऑफ प्रपोजल लग रहा है ये। अब ऐसा हुआ है, थर्ड एंड लास्ट आवर में आपका स्वागत है। दिस लास्ट आवर इज ऑल अबाउट, ओह माय गॉड, दैट्स सो स्ट्रेंज। बिल्कुल, अब इस आवर में तो ऐसी ही बातें आएंगी। शुरू हो रही हैं दुनिया भर की कुछ ऐसी हटके और मजेदार बातें जिनको सुनने के बाद आप कहेंगे ओह माय गॉश। हुआ यूं कि इंग्लैंड के जेम्स वॉल्श ने अपनी गर्लफ्रेंड पेज कुक को प्रपोज करने के लिए एक एक्वेरियम में शार्क्स के साथ स्विमिंग एक्सपीरियंस बुक किया। ही वाज इन अ टैंक विद शार्क्स, बट वो शार्क्स जो उस पे बिल्कुल पैसा नहीं लगाने वाले थे जबकि वो तो खून चूसने को तैयार थे। जी, अब आप सोच रहे होंगे भाई इतनी जगहें थी शार्क्स ही क्यों? क्योंकि पेज को शार्क्स बहुत पसंद है। ओ, अब समझ में आया, गर्लफ्रेंड को पसंद है तो भाई शार्क तो क्या, वो तो शार्क टैंक में तो क्या शार्क के मुंह में जाके प्रपोज कर लेगा आदमी। बेचारे लड़के बहुत भोले होते हैं, कुछ भी कर लेते हैं गर्लफ्रेंड्स के लिए, है ना? हाँ, तो गर्लफ्रेंड को शार्क पसंद है, बेबी को शार्क पसंद है। फेवरेट एनिमल के बीच में अगर प्रपोजल दे दिया जाए तो गर्लफ्रेंड ना भी नहीं करेगी। आम के आम, गुठलियों के दाम, अनफॉरगॉटेबल भी बन गया, न्यूज भी आ गई, हमने बात भी कर ली उसके बारे में। पेज को शार्क बहुत पसंद है, जेम्स ने सोचा कि फेवरेट एनिमल के बीच में रिस्क भी नहीं है। ऐसा है, दोनों को ग्रुप से अलग किया गया। जेम्स ने एक साइन निकाला, पलट कर प्रपोजल दिखाया। पेज बिल्कुल शॉक थी। जेम्स ना जो है वो एक सेकंड के लिए उनको ऐसा लगा कि उनकी गर्लफ्रेंड की सांस अटक जाएगी शॉक के मारे। इतना शॉक, वो पक्का हाँ ही बोलने वाली थी ना। हाँ, रिंग जो है वो वेट सूट के नीचे थी, कलाई पर बंधे जो नेकलेस है उसमें छुपा के रखे थे उन्होंने, और एक ऐसे बॉक्स में थी कि डर के मारे ऐसा ना हो कि क्या तो बह जाए या शार्क उसको खा जाया करके। मेरा एक ही सवाल है, अगर जवाब ना होता तो ऑकवर्ड साइलेंस में शार्क्स के साथ इतनी देर ठहरना पड़ता? अब जो होना था वो तो हो चुका।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, अभी ना हमने सुना है कि एक बंदे ने शाक के बीच में शादी का प्रपोजल दे दिया, और यहाँ हमारे घर में वीकेंड पे बाहर जाने का कोई प्रपोजल रख दो तो सवाल आता है कहाँ पार्किंग मिलेगी, कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, कितने लोग जा रहे हैं, टिकट कैसे आए। अरे भाई, बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहला सवाल, आधे लोग तो इस चक्कर में नहीं जाते। मेरे पास सबका जवाब है, फेस्टिव बाजार 2026 नारपानी माउंट बैटन सीसी IAEC, क्योंकि ये लेकर आ रहे हैं फेस्टिव बाजार 27 सितंबर को सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक। और बच्चे क्या करेंगे इसका जवाब मैं आपको सबसे पहले दे देती हूँ। बच्चे जाएंगे बाउंसी कैसल में कूदेंगे, जॉय राइड्स एंजॉय करेंगे, रेजिडेंस का परफॉर्मेंस एंजॉय करेंगे, आपको खाने देंगे, खुद भी खाएंगे और आप शॉपिंग भी करेंगे। आप तो जाओगे ना? आई नो, देखो मैंने आपको सब बता दिया, सब सवालों का एक जवाब, फेस्टिव बाजार। देखो क्या है ना कि इस बार अलग अलग कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। फैशन अपैरल, होम डेकोर, हैंडीक्राफ्ट, गिफ्ट, फेस्टिव प्रोडक्ट्स, बच्चों का जॉय कैसल राइड फाइट, जो भी है सब एक ही जगह पर मिल जाएगा। स्टॉल बुकिंग तो हमने जो बताई थी तो ऑलरेडी इतना कमाल का रिस्पॉन्स आ चुका है कि पीपल आर लाइक वाओ, अब तो मजे आ जाने वाले हैं। तो मजे तो आप लो ना, मैं तो आपको कह रही हूँ, तभी तो बता रही हूँ, आप क्यों मौका चूको, जाओ फैमिली के साथ, जाओ ग्रुप में, जाओ अकेले, जैसे मन करे जाओ, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं, जिसको जैसे मौका मिले, जैसे मन करे जाओ, लेकिन समय पर जाओ, 27th ऑफ सितंबर को सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक सही पते पे जाओ, माउंट बैटन सीसी मल्टीपर्पज हॉल, ठीक है? एंड दिस होल इवेंट इज सपोर्टेड बाय पीपल्स एसोसिएशन। ठीक ठीक है, ठीक है।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
2: ये दुनिया बड़ी रंगीली, ये दुनिया बड़ी नशीली, ये दुनिया बहुत अजीब है भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। आप कहेंगे किसका बर्थडे आ गया, बता रही हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, पूरा तो करने देते गाना। हाय वेलकम बैक, दिस इज मी मुग्धा। रुको रुको रुको, ये गाना एक के लिए नहीं है, पूरे खानदान के लिए बज रहा है। आप इमेजिन ही करो ना कि घर में बर्थडे पार्टी है, केक आया है, कैंडल्स हैं, सब तैयार है, एंड जैसे ही कोई पूछे बर्थडे बॉय कौन है, पांच लोग इकट्ठा एक साथ हाथ उठाएं, फाइव बॉयज ऑल टुगेदर, पांच बच्चों की मम्मी भाई। अमेरिका के लोवा लोवा मतलब लोवा में एक फैमिली के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक ही परिवार की लगातार पांच जेनरेशन का बर्थडे एक ही दिन आ रहा है, 14 सितंबर। स्वामी प्राणनाथ, ये कैसा कोइंसिडेंस है? अब है बहन तो है, देख लो, अनयूजुअल कोइंसिडेंस है। और ये इतना अनयूजुअल है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। फैमिली में ग्रैंडफादर विल्बर, उनकी बेटी एडी, उनके बेटे फ्रेड, फ्रेड की बेटी एमा, एमा का बेटा आर्थर, सब एक ही डेट को पैदा हुए हैं। आर्थर के 2025 में जन्म के बाद ना फैमिली ने इसको रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया, एंड वाज एक्सेप्टेड, ऑफ कोर्स होगा ही। एंड ट्विस्ट है, जेनरेशंस का सीक्वेंस भी बहुत सही है। ऐसा नहीं है कि दो लड़के एक लड़की, दो लड़के एक लड़की, ना ना ना ना ना ना, देखो सिस्टमैटिक चल रहा है सब, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल। अरे कैसे भाई, नेशन वॉन्ट्स टू नो साइंस, जवाब दो। बर्थडे कैलेंडर ने भी ना पैटर्न बना रखा है, ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक। वाओ, मेरा सवाल ये है, इस घर में केक कैसे कट होते होंगे? सबको अपना बर्थडे केक चाहिए होता है ना, तो कैसे होता है? बेकरी वाले की तो लॉटरी लग जाती होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो एक ही केक कितना बड़ा बनाते हो भाई कि पांच लोग बांट के खाते हैं उसको? नाम लिखते लिखते क्रीम खत्म हो जाती होगी। बहुत सारे सवाल है मेरे पास, मेरा शो खत्म हो जाएगा।

एक फायदा है, इस फैमिली में बर्थडे भूलने का एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं है। एक का याद है, सब का याद है। वाह, ये सबसे बेस्ट पार्ट है ना।

0: நன்றி நமஸ்காரம்.
1: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir? Bhajan Baithak. जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर. भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची. गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक. 26 September, Engage Theatre 2, Suntec Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
2: It's a Masti Partner event.
3: Hangout करेंगे पर थोड़ा हटके. ये है Masti Hangout RJ Mugdha के साथ.
4: जा रहे हो तुम कहां जाओगे? पर पम पम पम पम पम लौट के वापस यहाँ आओगे. ये आई गॉट द परफेक्ट सॉन्ग फॉर एवरी शो ऑन रेडियो. क्यों? क्योंकि आपको कभी जाने को नहीं कहता, बस ये कहता लौट के वापस गए होंगे. तो सिंगापुर आज के मस्ती हैंगआउट का टाइम यहीं पर खत्म हो चुका है, हो रहा है इनफैक्ट. आज का शो शुरू तो मंडे की बात से हुआ था, दोस्ती मंडे के साथ बैलेंस एंड दिस एंड दैट. देखिए 3 घंटे बाद हम कहाँ पहुंच गए हैं. सिंगापुर के अचीवमेंट्स, चैलेंजेस, बॉलीवुड का हंगामा, गोल माल गोल, और उसके बाद तो शार्क की दुनिया में चले गए. क्रिएटिविटी देखिए अपने लोगों की. कोई शार्क के बीच में शादी का प्रपोजल दे रहा है, किसी फैमिली में 5 बच्चे एक ही दिन पैदा हुए हैं. ओह माय गॉड. कोई तो पूरे ऑर्केस्ट्रा पे गाना लॉन्च कर रहा है. आज की सारी बातों के बीच में मुझे एक चीज समझ में आ गई है, हर दिन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने के लिए कुछ बड़ा करना जरूरी नहीं है. हाँ, कभी कोई अच्छा गाना, किसी दोस्त की कोई फनी सी बात, कोई अजीब सी खबर, पूरा मूड बदल सकती है. मेरा तो शो करते करते पूरा मूड बदल जाता है. यस, तो मंडे को लेकर इतनी कंप्लेंट्स मत किया करो यार. बेचारा हर हफ्ते आता है, इतनी मेहनत करता है, आपके दुख भी झेलता है, अपने दुख भी झेलता है, सुख की कोई बात नहीं करता उससे. हर बार हम ऐसे रिएक्ट करते जैसे बिना बताए घर आ गया हो. कितनी बार कोई बर्दाश्त करेगा? सोचो किसी दिन कैलेंडर से मंडे गायब हो गया तो वीकेंड का वाइब भी नहीं आएगा, आपको फील ही नहीं आएगा. तो मैं हूं मुग्धा, आप सुन रहे थे मस्ती हैंगआउट ऑन रेडियो मस्ती 24/7. बाकी का दिन अच्छे से बताइए, म्यूजिक सुनते रहिए, अपने पास आस पास की जो छोटी फनी बातें हैं, चीजें, उनको नोटिस करते रहिए. और अगर कुछ ऐसा फनी दिख जाए कि आपको लगी, ये तो बताना चाहिए मुग्धा को, तो मुझे 9151896 पर बता दीजिए. मिलते हैं वेंसडे को नए मस्ती हैंगआउट के साथ. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: नचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
6: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत,
7: ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
8: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
5: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.
1: Yo, yo, honey singer. चलती रहेगी आज सारी रात दारू, तुम बोतलें तैयार कर लो, पीने के लिए कोई वार नहीं होता, तुम मेरा एतबार।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट,
4: दे आर फ्रेश, they are

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20.
2: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा.
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है. Time to raise the bar. Ramba. Musti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week. Full on Renuka style. Renuka. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं. एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है. ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस. डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते. हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से.
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे
1: पुरुष ही नहीं महापुरुष है महापुरुष।
0: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
3: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है गैस।

0: ये कर दिए रहे।
1: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय।
2: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir bhajan baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
1: It's a Masti Partner event. Kuch purani dhune. Kuch bhuli bisri yaadein.
2: Kisi ki muskurahaton pe ho nishaan.
1: Koi awaaz. कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

हाँ, तुम ही डीजे, तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले। बड़े बड़े हिट सुनो। रेडियो मस्ती 24/7 पर गुड इवनिंग, नमस्ते, क्या हाल चाल। आई नो सुबह ही मिले थे, वापस से बता दो यार हाल चाल। सुबह से लेकर आजकल शाम तक में ही लोगों की जिंदगियां जो है वो पलट के रह जाती है, तो हमारे तो कुछ ही घंटे हुए, दैट्स ओके। एंड दैट टू, इट्स अ मंडे, एंड मंडे वाली शाम यानी कि मस्ती वॉइस आपकी चॉइस डेफिनेटली लेकर आ जाती हूँ मैं। मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ रहने वाली हूँ 8 बजे तक। देखिए ऑन एयर तो रहूंगी ही रहूंगी, लेकिन उसी के साथ साथ एक और जिम्मेवारी का काम जो है वो मुझे दे दिया गया है कि भाई मस्ती AVI पर जो है वहां पर भी आना है। सो हमारी मुलाकात बिल्कुल वहां पर भी होगी, एंड इट इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड टॉकिंग टू द बैक स्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। मैं ये कह रही थी कि आप ज्वाइन जरूर करिएगा वहां पर भी, एंड या जस्ट आस्क देम क्वेश्चंस, यू नो आप क्या फील करते हो, और उधर कॉमेंट करके उनको जरूर बताइएगा। उनका प्रोत्साहन जिसको कहते हैं ना, वो देने के लिए भी आप वहां पर आ सकते हैं। जस्ट फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट ओवर देयर, एंड या आप हाय बोलोगे और हाय से थोड़ा सा और भी कुछ ज्यादा बोल दोगे तो और भी हमें अच्छा लग ही जाएगा। सो ये है अभी का प्रोग्राम, साथ साथ में मुझे तैयार भी होते रहना। आपको तो पता ही है कि कैसे चलता है, जिस दिन AVI और शो साथ साथ में होता है ऑनलाइन, उस दिन में बीच बीच में जो है जाके तैयार भी होती हूँ। मतलब देयर इज जिंदगी में क्योस किसी के कम हो और उसमें और ऐड करना हो तो कोई वो मुझसे ही सीखे। बट वेल, इसी बात के साथ आप बताओ कि आपका मूड कैसा है, आपका वीकेंड कैसा गया, और क्या सुनने का जो है विचार है, किस तरह का मूड जो है आपने आज इस प्लेलिस्ट का सेट करना है। सो यू थिंक अबाउट दैट, यू लेट मी नो योर चॉइस ऑफ गाना। टिल देन आप इंजॉय करें मेरे चॉइस ऑफ गाना, एंड तब तक के लिए चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो शुरू हो ही चुका है रेडियो मस्ती 24/7 पर। गुड इवनिंग, नमस्ते, एंड Let the Monday wali party begin.

0: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus present for Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood come music, energetic dancing, good Indian food, and exciting surprises.
1: Suat.
0: Join Kariyanka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
2: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tessensen Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 81382790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
3: It's a Masti Partner event.
4: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
5: 5:05 हो चुके हैं, 19 मिनट। रेडियो मस्ती 24/7 ऑन ट्रैप के साथ मस्ती वॉइस आपकी चॉइस जो है वो चल रहा है। एंड भाई, चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड चॉइस ऑफ व्हिच साइड यू आर ऑन टेल्स यू व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग यू आर। भाई हाल ही में एक चीज काफी ज्यादा वायरल हुई, दैट वॉज कैटरीना कैफ जो है गणपति किसी के घर में गणपति के पूजा में बिल्कुल गए थे। एंड दैट वॉज नीता अंबानी इज दिस वन, अपने फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड उनके विकी कौशल के साथ, एंड सबके साथ। एंड देन इट केम काइंड ऑफ, सो एक कोई तो एक तो ये इन्फ्लुएंसर्स, क्या ही बताऊं मैं, इनका खत्म ही नहीं होते हैं ये। सो वेल, हूएवर दैट, मेरे को याद भी नहीं है, बट देन दिस गाय रियली सीज की कैटरीना कैसे, क्या ही हो गया है मैडम, कुछ तो ख्याल कर लिया होता, मतलब क्या क्या कर लिया है? अरे भाई, सो बेसिकली काफी सारे लोगों ने उनको शट डाउन भी किया उनके, बट उनको अभी ये लग रहा होगा कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो ही गया, मैं वायरल तो हो ही गया, सब मेरे वीडियोस ले लेके मेरे को बुरा भला जरूर बोल रहे हैं, लेकिन हर जगह मेरी चर्चा जरूर चल रही है। सर मुझे तो आपका नाम, मैंने हाँ बहुत सारे वो चीज देखे हुए हैं, बट देन आपका नाम रजिस्टर नहीं हुआ, क्या नाम था आपका यार, मुझे याद भी नहीं करना है। तो बेसिकली ये उनके उनको लेकर काफी चर्चा हुई। तो हाल ही में सलमान खान ऑल्सो, उन्होंने कई सारी चीजों पे अपनी आवाजें उठाई हैं, एंड सबसे ज्यादा आई थिंक उन्होंने डांट मारी है पापराजी को। देर इज दिस वेरी लव हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सलमान भाई एंड पापराजी। सो अब मेरे को थोड़ा चेंज ऐसा लग रहा है कि ये डाट काफी मतलब लॉजिकल है। कहते हैं कि तुम लोग अलग अलग कहां कौन से लड़कियों के एंगल से फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हो, विच आर नॉट ओके, एंड देन यू राइट दैट कि भाई पहचानो कौन है। The girls are not okay with this, and there are a lot of girls who have already in paparazzi ko kafi daat laga chuki hai. Neha Dhupia, I've seen once, she has mast unhone jhaada tha unko ki khabardar meri aisi koi photo agar tum logon ne click ki aur post ki to fir main tumko bataungi and all those things. So that's what he also said, that ladkiyon kabhi bhi tumko aisa lage ki aisa kuch ho raha hai, matlab udhar hi chappel lagana. Maine kaha ha, बात तो सही कही भाई ने। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स ही बैक्ड कैटरीना कैफ एज वेल, और कहते हैं कि भाई, एंड वो इतना ज्यादा वो फ्लो में आ गए, उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा सिक्स पैक्स अब है और मैं जो हो बुड्ढा नहीं दिखता हूं, एवरीथिंग। ही टुक ऑफ हिज टी-शर्ट एंड शॉर्ट कि मेरे सिक्स पैक अब नहीं है, मेकअप उतार दिया, सब कुछ कर लिया, देख लो बुड्ढा दिखता हूं मैं, है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खबरदार, मैंने एक भी किसी का कुछ ऐसा कुछ लिखते हुए देखा ना तो फिर मैं बताऊंगा। So that is what is going on. अभी भाई लोगों, या लो चाहे उल्फत ही चल रहा है, भाई आजकल काफी सिंसियर बातें कर रहे हैं। रेडियो मस्ती 24/7 पर फिलहाल सिंसियरली प्लेइंग द अगला गाना।

0: ट्रैफिक अपडेट।
1: पूरी की पूरी ये छोरी ड्रामा क्वीन है, पक्की बात बता रही हूँ, मैं खुद ही बता रही हूँ और किसी को इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। रेडियो मस्ती 24/7 पर 5:30 बज चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में और फटाफट से लेते हैं ट्रैफिक का अपडेट। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स चांगी आफ्टर लोनी रोड। हेवी ट्रैफिक की खबर है ऑन PIE टुवर्ड्स चांगी बिटवीन जलान यूनोस एंड KPE और एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन PIE टुवर्ड्स चांगी आफ्टर स्टीवंस रोड। सो ये था इस घंटे का ट्रैफिक का अपडेट। भाई हमारे सुनील जी जो की ऑल द वे फ्रॉम जबलपुर हमारे साथ ट्यून इन हो चुके हैं और उन्होंने यहाँ पे गाना रिक्वेस्ट किया है। वो वेट भी कर रहे थे, उन्होंने सुबह भी कहा था कि ये रिक्वेस्ट वाला शो कब होता, तो मैंने उनको कहा था शाम को होता है, जबकि मैंने सुबह भी उनकी रिक्वेस्ट प्ले की थी बाय द वे। सो भाई कूली नंबर वन का ये गाना जो शायद मैंने भी उतना नहीं सुना होगा, बट देन आपकी चॉइस सर आंखों पर, वही प्ले करने वाले हैं कमिंग अप नेक्स्ट। सुनील जी सुन रहे हो ना आप?
2: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.

0: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique? Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून. हमने उसे कहा इश्क सूफियाना. दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया. 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड सीएससी ऑडिटोरियम टिसेंसन रोड. टिकट $60 ऑनवर्ड्स. कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0. इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया.
2: It's a must-be partner event.

0: आपके हिट्स, आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला। मस्ती बॉयस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: What if this combination happened? Just listen to me. Radio Masti 24/7 Antra के साथ Masti Boys आपकी choice चल रहा है। अगर ये combination होता कि superstar हमारे रजनी अन्ना, ठीक है, वो on screen, रहमान साहब compose कर रहे हैं music and Michael Jackson singing. Yes, Michael Jackson. क्या होता अगर ये होता? I think रजनी अन्ना के साथ यही सब हो सकता था, but what if वाली बात आ जाती है यहाँ पे। कंपोजर एस थर्मन जो है, उन्होंने हाल ही में इस बारे में जो है, इस कोलैबोरेशन के बारे में, that was being discussed रजनीकांत के जो है एक ब्लॉकबस्टर मूवी जिसको रोबोट नाम का मूवी आपने सुना भी होगा। सो भाई, उनके अकॉर्डिंग रहमान साहब और माइकल जैक्सन वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ सॉन्ग फॉर द फिल्म। बट या Michael Jackson ki death June 2009 meant it never materialized. And here's the fascinating bit. A.R. Rahman jo hai himself has previously spoken about ye particular story jo main aapko keh rahi hu, what if wali. After winning apne do Oscars for Slumdog Millionaire in 2009, jo Rahman saab hai wo mile Michael Jackson se at his home in Los Angeles, and what was expected to be a short meeting apparently turned into a very long conversation about music and world peace and even Michael Jackson ki dance philosophy. बाद में when he returned to India, रहमान साहब जो वापस आए and told director Shankar about the meeting, भाई Shankar apparently asked him कि भाई क्या Michael Jackson गाएंगे रोबोट मूवी के लिए, and yeah, A.R. Rahman का reaction was basically wow, will he sing a Tamil song? Later he said that Michael was open to them working together, but before the collaboration could take shape he passed away. So just imagine what the track could have sounded like. Rahman saab ka music, Michael Jackson ki awaaz and Rajni Anna on screen.

शंकर साहब के विजुअल्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब ये अलग ही जो है यूनिवर्स में, कहीं समवेयर इन द पैरेलल यूनिवर्स समथिंग लेजेंडरी लाइक दिस कुड हैव हैपेंड. अमेजिंग, मेरे को सोच के कितना अच्छा सा लग रहा है. जैसे आपको लगता है ना मस्ती बॉयज आपकी चॉइस रिक्वेस्ट सॉन्ग वाला दिन जब आता है कि क्या बड़ा मुश्किल है, कौन सा गाना प्ले करा है यहाँ पे. सपना आंटी ने आज बड़ा ही शानदार जो है, जितना शानदार वो खाना वहाँ पे बना रही है उतना ही शानदार रेट्रो गाना यहाँ पर जो है बिल्कुल रिक्वेस्ट कर दिया है. रफी साहब साथ में आशा ताई और यहाँ कह रहे हैं कि ओ हसीना जुल्फों वाले, नहीं आई थिंक इनको गाने देते हैं, मैं नाच लेती हूँ यहाँ पे. झूम लेते हैं थोड़ा सा मंडे इवनिंग को.

छा।

0: poll. Musty voice aapki choice. You say, we play. Bade bade hits and all.
1: बताइए धीरे धीरे जो ये घंटा भी है आने को खत्म हो, टाइम रियली इज फ्लाइंग. रेडियो बस्ती 24/7 आपके साथ, मस्ती वॉइस आपकी चॉइस चल रहा है. एंड कौन है अब सारा अर्जुन की चॉइस? आप कहोगे कि कौन सारा अर्जुन, हम तो किसी सारा अर्जुन को नहीं जानते. आप बिल्कुल सारा अर्जुन को जानते हैं. अगर आप धुरंधर को जानते हैं तो आप सारा अर्जुन को जरूर जानते हैं. वो जो हम सभी का आजकल बड़ा फेवरेट सा गाना हो रखा ना, गहरा हुआ या, तो उसमें जो लड़की है जो धुरंधर में रणवीर सिंह की वाइफ बनती है, दैट्स सारा अर्जुन फॉर यू. आई थिंक दैट इज वन मूवी जहां पर हर किसी की नजर ये नए टैलेंट पे पड़ी कि भाई बात तो है इस बंदी में. इस कदर पड़ी कि जो मधुबाला पे मूवी बन रही है उधर भी सारा अर्जुन को रोपन कर लिया गया है, विच इज अमेजिंग अमेजिंग थिंग एंड अ कॉम्प्लीमेंट एट द सेम टाइम एज वेल. अब ऐसा देखा जा रहा है कि इनकी जो करियर की गाड़ी है वो भी धुरंधर स्पीड पकड़ चुकी है. शी हैज जॉइंड वायर रिफ्का टैलेंट मैनेजमेंट एंड अब जो है प्रीवियस एजेंसी से निकलते हुए वायर रिफ्ट की तरफ पहुंचते हुए अब इन्होंने ऑलरेडी बैक टू बैक दो बिल्कुल फिल्में साइन कर ली है. वन इज विद मनीष शर्मा की नेक्स्ट ऑपोजिट अम्बरीश वर्मा, सपने वर्सेज एवरी वन के लिए ये बिल्कुल जाने जाते हैं. नाउ दिस प्रोजेक्ट मार्क्स दिस इंपॉर्टेंट न्यू फेज फॉर सारा हरसेल्फ, जो कि स्टार्टेड हर करियर, अपना चाइल्ड एक्टर थी ये, नॉट ओनली हिंदी बट साउथ इंडियन सिनेमा में भी इन्होंने कई सारे अपीयरेंस दिए हुए हैं. सो बाकी मनीष शर्मा जी की फिल्मों की बात करें तो बैंड बाजा बारात याद है, करेक्ट, लेडीज वर्सेस विक्की बहल, शुद्ध देसी रोमांस, फैन. सो ही इज रिटर्निंग विद द प्रोजेक्ट्स हूज टाइटल, प्लॉट एंड शूटिंग स्केड्यूल जो है अभी अंडर रैप्स रखा गया है. सो वेल, देखते हैं धीरे धीरे करके जो है ये जो नई पीढ़ी आगे बढ़ती हुई जा रही है. सारा अर्जुन हो गए, अहान पांडे, अनीत पद्दा, शर्वरी. ओ क्या आपने नया वाला ट्रेलर देखा? ओ माय गॉड, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट एज वेल. सडनली मेरे को याद आ गया और उस ट्रेलर को देख के बहुत सारा कुछ याद आ गया. वेल, सब बातें करेंगे लेकिन फिलहाल के लिए साथ साथ में मस्ती वॉइस आपकी चॉइस में आपके गाने भी प्ले करते हुए जाएंगे. यू टेल मी, क्या गाना सुनना पसंद करेंगे आप? 9158963 पर. और मैं जाती हूँ साथ साथ में तैयार होने.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो
1: क्या खबर लेके आई है आपकी लड़की 6 बजे के उस पार रेडियो मस्ती 24/7 अंतर आपके साथ मस्ती वॉइस आपकी चॉइस चल रहा है 6:05 हो चुके हैं। आपको पिछली खबर बताते बताते मुझे याद आया कि ये वाली खबर तो मुझे बतानी ही बतानी है क्योंकि आज सुबह का स्वागत जो है इस ट्रेलर के साथ हुआ एंड आई वेंट लाइक ओके नॉस्टैल्जिया का ये वाला डोज क्या ये डोज अब आज के टाइम पर काम आएगा कि नहीं आएगा दैट इज मुद्दे का सवाल। सो वेल आयुष्मान जो है इज कमिंग बैक एज प्रेम द बजातियाज आर गोइंग टू कम बैक एज देयर वर्जन ऑफ प्रेम ओके और मूवी का नाम है ये प्रेम मोहलिया। श्रेया घोषाल की आवाज में गाना रिलीज हुआ है एंड ट्रेलर भी रिलीज हुआ है एंड इसमें शर्वरी है। बिल्कुल आप ना ट्रेलर देखोगे ऐसा लगेगा कि मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाँ आपके है कौन और हम साथ साथ है मतलब वाइब आपको आने लगेगी। मुझे तो सबसे पहले उसमें एक शॉट है जब शर्वरी जो है पूरा शादी का लहंगा वहंगा गोल्डन कलर का पहन के अंदर आ रही होती है हमने कहा ये साधना का लहंगा इसने पहन लिया Now, if you know who is Sadhana and कौन सा साधना का lehenga and all those things. But then, the whole vibe or and the whole set and the whole everything is so very barjatia prone. I mean, okay. भाई अब सवाल उठता है कि ये आज के टाइम में फैमिली दैट सिंग्स टुगेदर ईट्स टुगेदर जहां घर की बेटियां समोसे कचोरियां खिलाती हुआ ये क्या आज के जमाने में हमें फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा भाई क्या पता। मैं तो कहती हूँ आज के जमाने का सच्चे में कुछ नहीं पता है कुछ भी चल सकता है लाइक कुछ भी जब जब ऐसा लगता है कि ये तो कौन ही देखेगा दुनिया उसको वायरल कर देती है और जहां लगता है कि ये तो बहुत अच्छा बनाया है लोग उसको पूछते नहीं है कि नहीं बताओ मैंने कर दी ना थोड़ी वाली काम वाली बात। बट वेल इट्स गुड टू हैव ऑल दीज लिटिल थिंग्स बिट्स ऑफ नॉस्टैल्जिया बार बार जो है बीच में आते रहने चाहिए मन लगा रहता है जैसे कि आज बैक स्टेज सिबलिंग्स के हमारे जो ब्रदर सिस्टर डुओ है राघव और प्राची थोड़ी देर में मस्ती एवीआई पे आ जाने वाले हैं और हम उनसे करने वाले हैं ढेर सारी कमाल कमाल की फन फन बातें। ऑफकोर्स उनके यहाँ के शो के बारे में तो बात करेंगे ही लेकिन मस्ती तो करेंगे ही ना जब हमारा नाम ही मस्ती है तो वो भी तो करना बनता है। सो मेक श्योर दैट 6:30 जब हम लाइव पे आए तो आप भी हमारे साथ वहां पर जुड़ जाए नो गोलमाल इन दैट गाना कमिंग अप नेक्स्ट फॉर यू ऑन रेडियो मस्ती 24/7

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक, जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
1: जीजी
3: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
1: GG Mart, your personal grocer.
4: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
5: और अगर अभी तक आपने जीजी मार्ट के कृषि वर्ल्ड ब्रांड के नट्स ट्राई नहीं किए हैं, यू कैन फिजिकली गो। अगर आप नोवीना साइड जाएंगे तो कियोस्क नंबर 12 नोवीना स्क्वायर पर बिल्कुल वेलोसिटी में आपको वहां पर जीजी मार्ट का जो है वो बिल्कुल स्टॉल मिल जाएगा। आप वहां जाएंगे तो 2 पे 1 फ्री वाला जो ऑफर है उसका फुल ऑन फायदा उठा सकते हैं। द मिड ऑटम फेयर इज ऑन, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। इतनी गारंटी है, एक बार आप उसको ट्राई करेंगे तो बार बार जीजी मार्ट ऑनलाइन से इसको ऑर्डर जरूर करेंगे। इट इज केमिकल फ्री, इतना सब कुछ है, सब कुछ ऑर्गेनिक है। एंड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, इफ यू डोंट नो, जीजी मार्ट ऑनलाइन से जो है वो काफी सारी संस्थाओं को भी जाता है जो वो लोग इससे कमाते हैं। सो नॉट ओनली दिस बट कम्युनिटी के लिए भी काफी काम ये कर रहे हैं। सो व्हाई नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ यहां पर बिल्कुल जुड़ी हुई है और चल रहा है मस्ती वॉइस ऑफ की चॉइस। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो गोइंग ऑन, बट राइट हियर राइट नाउ लेट अस टॉक अबाउट अपना सिंगापुर। भाई तेज तेज अगर आपने चलाई हुई है अभी तक अपने फोन की आवाज आवाज नीचे, सो पब्लिक बस में अगर ट्रैवल आप करते हैं देन दिस वन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेंसडे यानी कि 23rd of September से सम थिंग्स दैट पीपल मे हैव ट्रीटेड एज जस्ट लाइक बैड बस एटिकेट कैन एक्चुअली बिकम एक ऑफेंस। यप, सो प्लेइंग म्यूजिक रील्स और वीडियोज लाउडली, पुटिंग योर फीट ऑन द सीट्स, लिटरिंग और ईटिंग and drinking on board public buses may. Under the new regulations, these can attract a maximum fine of $500. And the rules don't apply only inside the bus. They also cover conduct at bus interchanges and terminals as well. So, agar matters are serious, for example, causing an obstruction or putting other commuters unko danger may at an interchange or terminal may, or soiling a bus interchange or terminal may, the maximum penalty can go all the way up to $5,000. These penalties are being aligned with rules already in place for Singapore's rail network as well. Important point ye hai, bus captains are not going to be handing out the offense ke notices. LTA keh raha hai ki they need to concentrate on what is most important, safely operating the bus, aur wahi jo hai hamara primary concern hai. So instead of authorized staff of the 4 public bus operators including the ticket inspectors and bus interchange staff, they can issue an administrative notification of offense to someone suspected of breaking the rules and LTA uske baad jo hai iske investigate karegi. So well, mudda ye baat hai ki jo abhi tak aapko agar kabhi laga tha to ab ye rule लॉ 23rd September से सिंगापुर में बन रहा है। और यहां पर हम सभी को पता है कि सारे रूल्स यस फॉलो करने ही चाहिए, है ना। ये तो हमें बहुत अच्छे से अब इतने सालों में तो रट गया है, बट आई थिंक इट्स फॉर गुड। What do you think about this? Radio Masti 24/7 Live पर फिलहाल I think we should move on अगले गाने की ओर. जो भी यही कह रहा है इकवरिया तो आ ही जा.

0: अगर कोई भी आपसे मुड़कर ये कहे कि तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो, तो फिर आपको अपने आप को काफी खुशकिस्मत समझना चाहिए। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर, मैं अंतरा आपके साथ चल रहा है मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस। सिखो, वो कभी कभी हमारी एक छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन किसी और के लिए कितनी बड़ी हेल्प बन सकती है ना। सो नेपाल में रिसेंट डेवस्टेटिंग फ्लड्स ने कम्युनिटीज को काफी अफेक्ट किया। घर एंड लाइवलीहुड्स दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड एंड द रोड टू रिकवरी इज गोइंग टू बी अ रियली रियली लॉन्ग वन, वी ऑल नो दैट राइट। सिंगापुर टू हैज बीन सपोर्टिंग इस में एक ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स जो है थ्रू गवर्नमेंट असिस्टेंस, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि कम्युनिटी से हो रही है। एंड नाउ राइट हियर इन सिंगापुर आप भी नेपाल के साथ खड़े हो सकते हैं। द नेपाल फ्लड रिलीफ फंड डोनेशन बूथ जो है वो ओपन है फ्रॉम 21st of September, विच इज आज से लेकर 3rd October तक, एवरी डे सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक, एट द एंट्रेंस ऑफ द लिटिल इंडिया आर्केड, 48 सरंगुन रोड। नाउ द इनिशिएटिव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदू वॉलंटियर्स नेटवर्क विद कम्युनिटी पार्टनर्स एंड बेनिफिशियरी जो है सिंगापुर रेड क्रॉस एंड एवरीबडी एल्स। ऑफ कोर्स मस्ती मीनिया नेटवर्क हमेशा हर उस कॉज के साथ खड़ा हुआ है जहां पर हमें लगा है कि यहां पर बिल्कुल हमारा बनता है आवाज उठाना। एंड रिमेंबर, कॉन्ट्रीब्यूशन का साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटेंशन और कलेक्टिव इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलीफ efforts are helping affected communities with essentials including food and clean drinking water and other emergency supplies. So agar aap little india ke aas paas hain, take a few minutes, visit a donation booth and contribute kare whatever you comfortably can. 21st of september to 3rd of october, yaad rakhiyega, subah 10 se 8 at little india arcade. Isse zyada aapko inquiry karni hai to aap call kar sakte hain 9166401 par. Stand with nepal because in difficult times every single contribution matters.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक, जिनकी भजन बैठक ने हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो
1: I really, really appreciate people जो जो है दूसरों की मदद जो है करना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं and it's a very, very good thing to do. Radio Masti 24/7 मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. भाई कुछ ऐसा हुआ that ये MRT की बात है सिंगापुर की यहाँ पर तो क्या हुआ कि एक आंटी जो है वो किसी से फोन पे बात कर रही थी एंड ये जो बंदी थी ये आंटी के बगल में बैठे हुए थे. नाउ जो है ये खुद एक रियल एस्टेट एजेंट है और उन्होंने ये शेयर किया कि मैं अपना नॉर्थ साउथ लाइन से जो है ट्रैवल कर रही थी एंड जो है ओलिविया नाम की ये जो थोड़ी सी एल्डरली लेडी थी वो किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी एंड सडनली शी कुड हियर कि कॉलर जो है वो जोर जोर से चीख रहा है बैंक कार्ड बैंक कार्ड. एंड देन जो ओलिविया है वो घबरा कर जो है अपना पासपोर्ट दिखाने लगती है उनको एंड देन सडनली this the other girl jo hai she realizes ki kuch jo hai gadbad hai and immediately she tells that auntie that I think it's a scam call yeah and because she couldn't watch and unka jo ek halka sa unko aashanka jisko kehte hai wo ho rahi thi and then she typed on her phone and told her it's a scam. It was only then that woman really realized that she had just been about to fall victim to a scam and then unko unhone bola ki bhai apna passport ya bank card bilkul bhi mat dikhana kitna bhi bol de koi video call pe and then the call of course baad mein jab police के पास उन्होंने रिपोर्ट किया तो यस पता चला कि ये स्कैम कॉल ही था. अब बताइए अगर तो वो बंदी उठ के उनकी हेल्प नहीं करती उनको नहीं बोलती या बोलती यार मुझे क्या लेना देना है मुझे तो सानू की वाली जो चीज है वो हो जाता तो फिर ये बंदी भी स्कैम हो जाती ना जाने कितने पैसे उनके जो है बिल्कुल चले जाते हैं. एंड या समथिंग बिग वॉज अबाउट टू हैपन. मैं तो ये इस चीज में भी बहुत मानती हूँ कि अच्छे कर्मों का फल कभी ना कभी ऐसी छोटी छोटी बातों पे आपको यूं ही मिल जाया करता है कि कोई बड़ी मुसीबत आने से पहले आपको कोई अचानक से जो है बीच में somebody comes like an angel and just kind of saves you from it. नहीं आपने कभी ऐसा फील नहीं किया है? मैं एटलीस्ट ऐसा फील करती हूँ. well, इसी बात के साथ आपकी जिंदगी में मैं एंजल मेरी जिंदगी में आप एंजल एंजल टू एंजल गाने प्ले करते हैं. गुड इवनिंग.

0: Suat.
1: Join Karienka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
2: बजते ही नाचना जरूरी है. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. यू से वी प्ले.
3: ऐसा मोटिवेट हुई हूं ना मैं थोड़ी देर पहले, ऐसी मतलब एनर्जी घुस के बाहर आई है कि आप तो मैं कहती हूँ चलो अभी डांडिया चलो. कौन से वाले डांडिया जाओगे ये बताओ. हेलो हाय वेलकम बैक. रेडियो मस्ती 24/7 अंतर आपके साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. भाई मैं ये कह रही हूँ कि ये जो है फेस्टिव सीजन का जो चल रहा है, ठीक है, जो नाचे नाचे का चल रहा है, डांडिया का चल रहा है, वो तो चल ही रहा है. अभी ये वो वाला भी सीजन है जहां पर खूबसूरत खूबसूरत खाने की चीजें भी इन मार्केट आ जाती है. आप किसी से मिलने जाओ, कुछ करने जाओ कि यार खाने के बिना तो कैसे ही हो सकता है. आप सोच रहे हो मेरी दुविधा. बट एनीवेज आई एम एक्साइटेड. आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वी इंडस का बॉलीवुड डांडिया नाइट एंड इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. भाई 10th ऑफ अक्टूबर को ये होने वाला है शाम को 6 बजे से एकदम दिन आ दिन धा आहा डांडिया स्टिक्स के साथ. खालसा एसोसिएशन बिल्डिंग सिंगापुर में ये है. $30 पर अडल्ट, $50 7 से 12 के बीच के अगर बच्चे हैं उनके लिए एंड 6 ईयर एंड बिलो के बच्चों का फ्री. सबसे लाजवाब बात जो है ग्रुप डिस्काउंट जो है वो भी आपको मिल सकता है. सो इफ यू वॉन्ट समथिंग लाइक दैट देन जस्ट एक व्हाट्सएप कर दें उनको 9022-1210. नंबर है 9022-1210. और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, देखो ऐसा तो है नहीं अंतरा आई है कुछ दे के ही जाएगी, है ना. तो क्राइम मास्टर गूगल डायलॉग क्यों आ गया. बट एनीवेज सो वेल मैं एक गाने का करने वाली हूँ हुक, है ना. हाय हुक आप सुने और बताएं 9151896 3. जिन्होंने इसका जवाब दे दिया है वेरी डन वेल डन. आपका नाम ऑलरेडी उसमें जा चुका है लकी पॉट में. जिन्होंने नहीं सुना है और कह रहे कि ओ अच्छा चलाना जरा, उनके लिए पेश किया जाए ये एक बार और ना, एक बार और. आई नो मैंने तैयार ही करके रखा है. That is right. So if you want to go V Indus ka Bollywood Dania Night ka hissa banna chahte ho, then bataye zara ki ye kaun sa gana hai jiska halka sa chota sa intro part maine aapke liye abhi abhi yahan par play kiya hai. 9151896 3. That's the number where you have to send the answer. Ab mahol ko on level next karne ke liye chalayenge hum agla gana. Hum kyunki naachne ke hi mood mein hai. Good evening.
4: Hey Jai Mata Ji. માતાજી ને હમ કહીને કહું છું કે વા ફરે વાદળ ફરે ને વાયરો ફરે પણ એક વાર બોલ્યા પછી મારા મિત્રો આ મિત્રો કદી ના ફરે કે હા.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: क्या गाना है ये, क्या गाना है ये, मूड ही हो गया एकदम, होता ना एकदम हो जाता है वैसी वाली फीलिंग आ गई इस गाने को सुनते सुनते, मैं तो खो ही गई थी इस गाने में। 7:37 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक पे, आइए आपको इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट दे। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स इटवास आफ्टर क्लेमेंटी एवेन्यू 6। हैवी ट्रैफिक की खबर ऑन PIE टुवर्ड्स चांगी एट BKE एग्जिट। व्हीकल ब्रेकडाउन मिलेगा आपको ऑन AYE टुवर्ड्स इटवास आफ्टर पिंचूरू रोड। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। हमारे भाम ऑल

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टिसेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: It's a Masti Partner event.
2: आपके हिट्स, आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। यू से वी प्ले।
3: आइए आपको जोआना की कहानी जो है पूरा किस्सा बताया जाए। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। कौन है जोआना? सो वेल, अमंगस्ट ऑल दी वायरल न्यूज व्हिच वाज हैपनिंग ओवर द वीकेंड एंड वीकेंड से भी इनफैक्ट थोड़ी पहले की ये बात है, तो हाइरोक्स बोल के जो रेस होती है, वी ऑल नो जो करते हैं एंड हु पार्टिसिपेट इन इट, दे नो वॉट इट इज। एंड एटलीस्ट हाइरोक्स फ्रटर्निटी का हर कोई बंदा जो है जोआना को बिल्कुल जानता है, और जो हाल ही में उनके साथ इंसिडेंट हुआ उसके बारे में आई थिंक हर कोई ही या एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। बीजिंग में जो है हाइरोक्स का ये सेशन हुआ, ऑस्ट्रेलियन हाइरोक्स एथलीट जोआना जो है वो अपना जो है कर रही थी अपना जो हाइरोक्स का एक के बाद एक सेशन, बट व्हेन द दैट सिटअप्स जहां पे करने होते हैं जंप एंड सिट एंड जंप एंड सिट, दैट इज वेयर she didn't realize and yeah wo jo hai bilkul poop incident banke reh gaya, but the thing was that she did not stop the race over there, she eventually finished the race and उन्होंने वो रेस जीत भी ली। आफ्टर दैट फिर वो उनको हॉस्पिटल ऑफ कोर्स लेकर जाया गया एंड वहां से उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला कि अ विन इज अ विन करके एंड एवरीथिंग। ये सारी चीजें हो गई एंड देन द होल हाइरोक्स कम्युनिटी केम ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग दैट ये सही नहीं था, बिकॉज बाकी जब वो ये वाला इंसिडेंट चल रहा था, पूप इंसिडेंट चल रहा था, उनके साथ साथ भी जो लोग थे उसी कार्पेट पे थे। हाँ, बाद में क्लीन जरूर किया गया, बट देन दैट वाज नॉट राइट। एंड इस तरह से बहुत सारी बातें होते होते अब ऐसा हो गया है कि हमारी जो हाइरोक्स की ये जोआना है, शी गेव अप हर बीजिंग वाला विन। या She apologized. सबका mainly ये कहना था कि भाई तुमने तो apologize भी नहीं किया, तुम तो कह रही हो win is a win, तो वो लोग और ज्यादा नाराज हो गए। And yeah, now she apologized and that she continued and she won the race despite of this on course incident and she has now withdrawn retroactively and अपने points जो है उन्होंने बिल्कुल forfeit कर दिए, क्योंकि बात और उंगली अब हाइरोक्स और उसके organization और biohazard तक चली गई थी। So ऐसी चीजें भी होती है दोस्तों, ऐसी चीजें भी होती हैं। बट वेल, जैसे कि हमारे दविंदर बाजी, वो मुझे हर बार मस्ती वॉइस आपकी चॉइस पे सरप्राइज टेस्ट लेते हैं मेरा, कि अंतरा चलो मैं ऐसा गाना ढूंढ के निकालूंगा और बताऊंगा, देखते हैं तुम लेकर आती हो कि नहीं। थैंकफुली हमारे पास हमारे लेजेंड वाले समर जी है कि हमारे पास हर किस्म के गाने आपको मिल जाएंगे। सो ये रहा आपका गाना। I'm also going to listen to it for the very first time with you, Davinder Paji. It's a retro gana. It's a very old gana. I hope you enjoy because it's your day. आज तो भाई request जो है सिर्फ listeners की चलेगी।

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.
1: देखिए देवेंद्र जी, आपके टेस्ट में मैं पास हो गई बहुत सारे खूबसूरत नंबरों के साथ। अगर आप अभी भी ट्यून इन एकदम एंड में किए हो और आपने सोचा हो कि अरे ये इस टाइम पर तो समर का टाइम नहीं होता है, नहीं नहीं, ये टाइम होता है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस का ऑन रेडियो मस्ती 24/7। ये है रिक्वेस्ट शो, हमारे देवेंद्र पाजी, उन्होंने मेरे को टाइम दूसरा दिया था। आज मैंने उनसे थोड़ी सी मोहलत मांगी, मैंने कहा 7 बजे के उस बार में प्ले करती हूँ। एंड यस, डेफिनेटली आई डिड नॉट फॉरगेट देवेंद्र पाजी, आई होप यू enjoyed the gana and bhai request hai, aap hi ka din hai to fir ye to karna banta hi hai. Isi baat ke sath bhai, aaj ka jo hai dihari khatam hoti hai hamari, hum chalte hain kyunki kal subah to wapas yahi aapko mil jayenge. Kal hai Tuesday morning, which means it's masti ka mantra time with me, aapki antara. And again of course we will have fun, we will have good time. Koshish karenge कि आपके ट्यूसडे को बहुत ही अमेजिंग बना दिया जाए। वैसे बाय द वे, अगर आपने आज कम बैक स्टेज सिबलिंग्स के साथ जो है राघव और प्राची के साथ का हमारा कॉन्वर्सेशन मिस कर दिया है, तो आप हमारे ऐप में मस्ती एवीआई ऐप पर जाकर बिल्कुल वापस से देख सकते हैं। यू कैन लीव योर कमेंट्स ओवर देयर। एंड मस्त है यार, दोनों बहुत ही ज्यादा मस्त है। बहुत मजा आया उनसे बात करके, एंड हर बात पे आई थिंक आई ऑल्सो लर्न 2-3 फ्यू थिंग्स, आई मेड देम लर्न ऑल्सो 2-3 फ्यू थिंग्स, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत ही माहौल अच्छा बन गया। इसी के साथ भाई हम यहाँ से जाते हैं। यू हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड, आई विल कैच अप विद यू टुमारो मॉर्निंग, ठीक है? बाकी की बातें कल होगी। ऑलराइट, गुड नाइट, आंत्रा इज साइनिंग ऑफ।

एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैंने देहाती, मेरे सर पे ये टैगोर की कविता भेली किसने रख दी।

सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: नमस्कार आदाब इन अ वेरी वार्म हेलो सिंगापुर। मैं हूं आपके साथ रेडियो मजी 24/7 लाइव और आपका हमदम आपका साथी। नाम है मेरा समर और एक बार फिर से हाजिर हूं साउथ ईस्ट एशिया के एकमात्र और सिंगापुर के ऑफकोर्स एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो रेडियो मस्ती के साथ लेकर लेजेंड्स फिर से। नाम मेरा है समर, पहचान गए होंगे आप। तो शुरू करते हैं आज का इशो। सिंगापुर फिल्में कई तरह की होती हैं, जैसे सोशल ड्रामा, क्राइम ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा, लेकिन इन सब के बाद कुछ खास तरह की फिल्में बनना शुरू हुई जिन्हें रोम कॉम ड्रामा कहा गया, मतलब रोमांस के साथ कॉमेडी का तड़का जिसमें था। लेकिन इसमें एक चीज और आप जोड़ सकते हैं, म्यूजिक, यानी रोम कॉम म्यूजिकली हिट फिल्में। और इस स्टाइल को इजाद किया था उस डायरेक्टर ने जिनकी बात आज हम अपने शो में करने वाले हैं। और ये कौन है, इनका नाम लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने हमें बहुत सी कमाल की फिल्में दी हैं, जैसे तुम सा नहीं देखा, पेइंग गेस्ट, हम किसी से कम नहीं। जी अगर आप पहचान गए हैं, फिल्में देखते हैं, तो आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ नासिर हुसैन साहब की।

0: तेरा दे।
1: नासिर हुसैन साहब उन चंद डायरेक्टर्स में से एक है और मुझे लगता है कि कोई इनके अलावा एक या दो ही डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जिनकी फोटो फिल्म के पोस्टर में एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ होती थी। ये रुतबा था नासिर साहब का, एक अलग ही पहचान थी नासिर साहब की और उनकी फिल्मों की। म्यूजिक लवर नासिर साहब की फिल्मों का म्यूजिक भी लाजवाब होता था। तो सिंगापुर आज हम नासिर साहब की फिल्मी कहानी आपको सुनाएंगे, मतलब उन्होंने कौन कौन सी फिल्में बनाई, फिल्मों की बातें करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि उनकी फिल्में म्यूजिकली हिट होती थी, तो आइए म्यूजिक से शुरू करते हैं आज का ये शो। आप सुनते रहेगा लेजेंड्स फिर से समर के साथ, नासिर हुसैन स्पेशल रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक लेजेंड्स, फिर से मैं आप आज सुन रहे हैं डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन साहब की कहानी समर की जुबानी। नासिर साहब का जन्म हुआ था 3 फरवरी 1931 को यूपी में। हालांकि ये एक बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनकी दादी मौलाना आजाद साहब, जो आजादी के बाद इंडिया के मिनिस्टर बने, एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी सिस्टर थी। लेकिन इनके पिताजी टीचर थे। अब टीचर थे तो ज्यादा पैसा नहीं कमाते थे। अब आप समझ सकते हैं कि मैं किस जमाने की बात करूं, जब मिनिस्टर्स के रिश्तेदार भी गरीब हो सकते थे। लखनऊ के पास एक छोटी सी जगह है शाहपुर, यहाँ इनके पिताजी पढ़ाया करते थे। इनकी वालिदा यानी मदर भोपाल से थी, तो इनकी फैमिली भोपाल ही शिफ्ट हो गई। भोपाल में एक स्कूल था जो अब भी है, अलेक्जेंडर स्कूल। इसमें इनके पिताजी पढ़ाने लग गए, तो फिर नासिर साहब ने भी स्कूलिंग यहीं से की। इसके बाद ये कॉलेज करने लखनऊ चले गए, तो लिखने का शौक इन्हें कॉलेज में ही लगा साहब। कॉलेज के दिनों में ही ये प्ले लिखने लग गए। एक कहानी भी लिखी इन्होंने जिसके लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था। और फिर इसी कहानी को लेकर कई सालों बाद इन्होंने एक फिल्म भी बनाई, लेकिन इस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे और कॉलेज के दिनों की भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। गाने इतने इंटरेस्टिंग है, इतने बढ़िया है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। आइए पहले गाने सुन लेते हैं। आप सुनते रहेगा रेडियो मसी 24/7 लाइव और लेजेंड्स फिर से समर के साथ। आज नासिर हुसैन साहब की बहुत ही म्यूजिकल कहानी आप सुनेंगे मेरी जुबानी।

0: अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने।
1: जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ हाँ हाँ छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा?

0: आंखों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रिशिवल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12, 11th टू 25th सितंबर। शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: क्रिशिवल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

रेडियो मस्ती पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ। ब्रेक से पहले मैंने बात की कॉलेज की। किसके कॉलेज की? नासिर हुसैन साहब की, जो आज के हमारे लेजेंड हैं। तो कॉलेज के दिनों में काफी सारे प्लेज नासिर हुसैन साहब ने लिखे और फिर कहानियां भी लिखी। लेकिन नासिर साहब सोचते थे कि ये कहानी पढ़ने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन इस कहानी को अगर विजुलाइज किया जाए तो कितनी अच्छी लगेगी। तो यानी नासिर साहब को कॉलेज के दिनों से ही फिल्में बनाने का एक शौक लग गया था, चस्का लग गया था यूं कहेंगे। बहरहाल जैसे ही कॉलेज पूरा हुआ, इनका कंप्लीट हुआ, तो इन्होंने घर वालों से कहा कि भाई मुझे तो फिल्में बनानी है, तो मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। अब इनके घर वाले थे पुराने ख्यालों के, मतलब फिल्मों के सख्त खिलाफ थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, फिल्में विल्में नहीं करनी है तुम्हें, यहीं रहो और कोई काम कर लो, कोई जाने की जरूरत नहीं कहीं पर, कोई नौकरी मिल जाएगी यहाँ पर। लेकिन साहब नासिर साहब कहाँ मानने वाले थे। तो साहब बात एक जगह जाकर अटक गई, न घर वाले मान रहे थे न नासिर साहब। तो घर वालों ने सोचा कि मौलाना आजाद साहब के पास ले जाया जाए, जो एक बहुत ही मकबूल नेता है, उनकी बात को ये टाल ही नहीं सकता, ये मान जाएगा। तो साहब लेके गए, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। घर परिवार वालों ने सोचा था कि मौलाना साहब इन्हें समझाएंगे। तो मौलाना साहब के पास पहुंचे और ये कहा कि देखिए साहब, ये फिल्मों में जाना चाहता है, इसे आप समझाइए कि ये ऐसा ना करे, नहीं तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। ये सुनकर मौलाना साहब बोले, तो क्या खराबी है फिल्मों में? अगर ये फिल्मों में जाना चाहता है तो जाने दो भाई, इंसान कोई भी काम करे लेकिन बस अच्छा करना चाहिए, तो अगर ये जाना चाहता है तो जाने दो। ये सुनकर घर वालों को तो आग लग गई उल्टा। अरे भाई, हम तो उन्हें यहाँ लेकर आए थे इस उम्मीद से कि मौलाना साहब उन्हें समझाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। होता ही है सिंगापुर के, जब भी हम किसी के पास जाते हैं कोई राय लेने, तो उसे हम तब तक सही समझते हैं जब तक वो राय हमारे फेवर में ना हो जाए। जैसे ही सामने वाला इंसान कुछ ऐसी राय देता है जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो वो भी हमें अच्छा नहीं लगता। बहरहाल ये भी सब परिवार घर आ गए, लेकिन फिर आगे क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। तब तक आप सुनिए नासिर साहब की फिल्मों के ये जबरदस्त गाने। समर के साथ हैं आप, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। और कुछ कहना चाहें, अपनी पसंद के गाने सुनना चाहें नासिर साहब की फिल्मों से रिलेटेड, तो हमें हमारे फेसबुक पेज पर आकर जरूर बताएं।

नमस्कार आदाब, एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूँ समर और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से रेडियो मस्ती पर। यह सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009। और आज हम अपने शो पर बात कर रहे हैं मशहूर डायरेक्टर मशहूर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन साहब की। और ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि जब नासिर साहब की फैमिली मौलाना आजाद साहब के घर होकर वापस आई, उन्हें समझाने ले गए थे वहाँ पर, तो सभी घर वालों ने उन्हें फिर से समझाया कि देखो भाई, जो वहाँ हुआ वो हुआ, अब तुम सुन लो, तुम फिल्मों में काम नहीं करोगे, तुम यही कोई नौकरी ढूंढ लो, बस कह दिया हमने। लेकिन साहब नासिर साहब तो जिद्दी थे, कहां मानने वाले थे। तो अल्टीमेटली उन्होंने अपना सामान बांधा और आ पहुंचे मुंबई। यहाँ उनकी खाला रहती थी, यानी उनकी मौसी, तो वो उनके घर मुंबई में कुछ दिन रुके। लेकिन अब खाला के घर भी कितने दिन रुक सकते थे। तो हुआ क्या कि उनके स्ट्रगल के दौरान जब वो मुंबई में रहते थे खाला के घर, तो उनके कुछ दोस्त बन गए थे, तो उन्होंने खाला का घर खाली किया और अपने दोस्तों के साथ शिफ्ट हो गए और उन्हीं के साथ रहने लग गए। और फिर वो एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर एआर कारदार साहब के असिस्टेंट बन गए। कुछ साल यहाँ पर रहे, फिर किसी ने बताया कि मुंबई का सबसे बड़ा स्टूडियो फिल्मिस्तान तो उस वक्त था, तो उसमें डायरेक्टर एस मुखर्जी साहब हैं और उन्हें कुछ नए राइटर्स की जरूरत है, तो तुम ऐसा करो वहां जाओ, अपना कुछ लिखा हुआ उन्हें दिखाओ, हो सकता है तुम्हें वहां काम मिल जाए। भाई किसी ने कहा तो वो चल पड़े। बहरहाल वहां पहुंचे और अल्टीमेटली मुखर्जी साहब को इनकी राइटिंग अच्छी लगी और इन्होंने इन्हें अपने ग्रुप में रख लिया। अनारकली नासिर साहब की पहली फिल्म मानी जाती है एज अ स्टोरी राइटर, लेकिन सच ये नहीं। अनारकली का जिक्र मैं बाद में करूंगा, पहले ये जानना जरूरी है कि पहली फिल्म कौन सी थी जो उन्होंने लिखी थी। एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था चांदनी रात। अब हुआ यूं कि इस फिल्म के डायलॉग राइटर की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, तो एस मुखर्जी साहब ने कहा कि नासिर तुम डायलॉग लिख सकते हो क्या, एक फिल्म है चांदनी रात। तो साहब ये तो तैयार हो गए, क्योंकि इन्हें तो जमाने को दिखाना था अपना टैलेंट। और इस तरह एज अ राइटर इन्होंने पहली फिल्म लिखी चांदनी रात। हालांकि फिल्म में इन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया। वेल, नासिर साहब की नींव का ये पहला पत्थर लग चुका था इंडस्ट्री में और अब इस पर एक बहुत ही कामयाब इमारत तामीर होने वाली थी। चलिए उनके किस्से में आपको सुनाता रहूंगा। लेकिन मैंने जैसे कहा था कि नासिर साहब को ना बेस्ट डायरेक्टर के साथ साथ म्यूजिक का कमाल का सेंस था, तो उनके इस कमाल के सेंस को आप भी महसूस कीजिए इन गानों के साथ। ये उन्हीं की फिल्मों से हम लेकर आए आपके लिए। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहें शो के बारे में, तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर हमें जरूर कहिएगा, हमें अच्छा लगेगा। मैं मिलता हूँ इन गानों के बाद आपसे।

विवाह

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Healthy khao, protein khao.
2: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Shaam ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
1: Healthy khao, protein khao.
2: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
3: Gigi.
2: Crushable nuts only on GigiMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
3: Gigi Mart, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 September, Engage Theatre 2, Suntec, Singapore. Bhajan Jamming with Backstage Siblings. Tickets on Sistic. Book now. For more details, call 9866-7144.
5: It's a Masti Partner event.
6: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009, दैट इज रेडियो मसी 24/7 लाइव और लेजेंड्स, फिर से हमारे शो का नाम, जैसा कि मैंने कहा। और आज हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन साहब की बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक से पहले कह रहा था कि नासिर साहब को अच्छी म्यूजिक सेंस वाला डायरेक्टर भी माना जाता है। इसके पीछे की बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप तो मान जाएंगे, बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर्स हुए हैं जो आर डी बर्मन साहब के पास जाकर ये कहा करते थे कि अरे यार, नासिर की फिल्म में तुमने जो ट्यून्स बनाई है ना, अब सारी ट्यून्स तो उसने ली नहीं होंगी, तो अब जो बची हुई हैं जिनको नासिर साहब ने यूज नहीं किया, तुम वही दे दो, नई मत बनाओ, हम उनमें से कुछ छांट लेंगे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह का सेंस था और लोगों का कितना भरोसा था नासिर साहब पर, उनके म्यूजिक सेंस पर। और यही टैलेंट एस मुखर्जी साहब को भी नजर आ गया था, तो उन्होंने नासिर साहब से कहा कि भाई, तुम मेरी फिल्मों की म्यूजिक सेटिंग में भी बैठा करो। बहरहाल, चांदनी रात में ये डायलॉग्स लिख चुके थे, लेकिन पहली फिल्म जिसकी पूरी स्टोरी इन्होंने लिखी वो थी अनारकली। ये फिल्म बहुत

प्रदीप कुमार और बीना रॉय इसमें लीड रोल में थे। सुपरहिट रही ये फिल्म, नासिर साहब की पहली ही फिल्म, और इसके बाद फिल्मिस्तान ने इन्हें एक बढ़िया राइटर मान लिया। इसके बाद एस मुखर्जी साहब के छोटे भाई सुबोध मुखर्जी एक फिल्म बना रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म का नाम था मुनीम जी। इस फिल्म के जो हीरो थे उनकी इमेज इस फिल्म से पहले अलग थी और इसके बाद कुछ अलग ही हो गई, और फिर इसी इमेज के साथ उन्होंने हिंदी फिल्मों में राज किया। लेकिन इस फिल्म और इस हीरो और नासिर साहब की हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर, एक बार फिर से आपसे मुखातिब हूँ मैं समर। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से और आज हम बात कर रहे हैं किसकी? यस, नासिर हुसैन साहब की। तो मैं आपसे ब्रेक से पहले बात कर रहा था फिल्म मुनीम जी के बारे में। सिंगापुर इस फिल्म के हीरो थे देवानंद, और इस फिल्म से पहले देव साहब की इमेज एक सीधे साधे इंसान की थी जो समाज के लिए लड़ता है। लेकिन इस फिल्म के बाद देव साहब की इमेज बिल्कुल चेंज हो गई। इसके बाद उन्हें एक बेहद ही रोमांटिक एक्टर के रूप में लोग जानने लग गए जो लड़की को छेड़ता है, लेकिन स्टैंडर्ड है उसका, ऐसे नहीं है, हाँ लोफर नहीं है, गाने गाता है। तो यूं कह सकते हैं कि देव साहब जो एक रोमांटिक स्टाइल के लिए जाने जाते थे, इसके पीछे नासिर साहब का बहुत बड़ा हाथ था। तो अनारकली के बाद नासिर साहब ने लिखी मुनीम जी, जो एक जबरदस्त हिट फिल्म रही। और गाने की तो क्या बात करें साहब, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, ये गाना बहुत ही हिट हुआ जिसे किशोर कुमार साहब ने गाया था। नासिर साहब के म्यूजिक सेंस को लेकर एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक बार एस डी बर्मन साहब फिल्मिस्तान की एक फिल्म का म्यूजिक दे रहे थे, तो मुखर्जी साहब ने कहा कि नासिर तुम बर्मन साहब के साथ जाओ और ट्यून सुनना जाके। तो साहब ये घर आ गए बर्मन साहब के। पहले तो बर्मन साहब ने इन्हें खाना खिलाया, फिर कलकत्ता से रसगुल्ले भी आए थे, तो कहा कि भाई रसगुल्ला भी आया है कोलकाता से, तुमको ये भी खाना पड़ेगा। इसके बाद बर्मन दा ट्यून बनाने लगे। फिर दो तीन ट्यून बनाने के बाद नासिर साहब को उन्होंने सुनाई तो इन्हें पसंद नहीं आई, लेकिन ये कुछ बोले नहीं। सोचे कि सीनियर हैं, पता नहीं कुछ बोलूंगा तो नाराज ना हो जाए, इन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। लेकिन बर्मनदा ने कहा तुम सच्ची सच्ची बोलो, कैसी लगी ये ट्यून तुम्हें? तो नासिर साहब बोले दादा मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये सुन के दादा को बहुत गुस्सा आया और दादा ने सोचा कि एक तो मैंने इसे इतना बढ़िया खाना खिलाया और ऊपर से ये मेरी ही ट्यून को बुरी बता रहा है। तो बहरहाल ये तो एक किस्सा था, लेकिन इससे पता चलता है कि नासिर साहब म्यूजिक को लेकर कितने स्ट्रिक्ट थे। वेल, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और नासिर साहब की इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आप सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव। मैं हूं समर आपके साथ।

0: take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: Saturday night ka plan? Party? Concert? Ya phir? Bhajan Baithak? जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो

वचन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस। डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर। इन बेहतरीन गानों के बाद एक बार फिर से कुछ बातें हो जाए नासिर साहब की, क्योंकि आज हम नासिर हुसैन साहब की बातें कर रहे हैं लेजेंड्स फिर से। मैं हूं समर आपके साथ। अब तक साहब मैंने जो आपको कहानी सुनाई है उसमें वो दो हिट फिल्में लिख चुके थे, हालांकि तीन लिखी थी, एक विराज बहु नाम की फिल्म भी लिखी थी उन्होंने, लेकिन वो इतनी बड़ी हिट नहीं रही। और वैसे भी वो कहते ना कि काम तो अच्छा ही याद रहता है। तो साहब इसके बाद 1957 में इनकी वो फिल्म आई जिसे इन्होंने लिखा, इसमें स्क्रीन प्ले भी इनका था और डायलॉग्स भी इन्हीं के थे, यानी ये कंप्लीट नासिर हुसैन साहब की फिल्म थी राइटिंग में। वही फिल्मिस्तान का प्रोडक्शन था, सुबोध मुखर्जी का डायरेक्शन और एस डी वर्मन साहब का म्यूजिक, और एक बार फिर देवानंद। और फिल्म थी बेइंग गेस्ट, सुपर डुपर से भी ऊपर हिट हो गई है फिल्म। तो म्यूजिक तो कमाल ही था साहब इस फिल्म का।
2: छोड़ दो

0: नहीं।
1: यानी अब तक नासिर साहब फिल्में लिख रहे थे फिल्मिस्तान के लिए, लेकिन अब इन्होंने डायरेक्शन करने की सोची और फिल्म बनाई भी जो बेहद कामयाब भी रही। लेकिन इसके बारे में सिंगापुर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste bahnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रिशिवल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12, 11th टू 25th सितंबर। शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
5: जीजी
4: क्रिशिवल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
5: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
6: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
7: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
8: Only on Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore. Check it out.

0: सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल, स्वागत लेजेंड्स फिर से। आप सुन रहे हैं सिंगापुर और ये है रेडियो मसी 24/7 लाइव सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009। और आज मैं नासिर हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ। नासिर साहब ने अपना करियर फिल्मिस्तान में ही शुरू किया था और सुबोध मुखर्जी की कई फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की। इसके बाद नासिर हुसैन साहब ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया जिसमें सिर्फ कामयाब फिल्में ही उन्होंने बनाई और साथ ही सुबोध मुखर्जी भी बड़े फिल्म मेकर बन गए थे और दोनों की दोस्ती हमेशा चली। इन दोनों की फिल्मों में एक कॉमन चीज होती थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सुनेंगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। नासिर साहब की फिल्म में एक कैरेक्टर, चाहे वो एक मिनट के लिए क्यों ना आए, उसका नाम होता था सुबोध मुखर्जी। और सुबोध मुखर्जी की फिल्मों में कैरेक्टर का नाम, चाहे वो एक मिनट के लिए आए, उसका नाम होता था नासिर हुसैन। आपको कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। बहरहाल हम बात करने वाले थे इनकी पहली फिल्म की जो इन्होंने डायरेक्ट की, जिसमें शम्मी कपूर लीड रोल में थे और अमिता उनकी हीरोइन थी। और ये फिल्म थी

नासिर हुसैन साहब ने देखा जाए तो कई एक्टर्स को स्टार नहीं सुपरस्टार बनाया है, जिनमें से शम्मी कपूर भी एक थे। क्योंकि इससे पहले शम्मी कपूर की लगातार 8 फिल्में फ्लॉप हो गई थी और इनसे पहले देव आनंद साहब की इमेज भी इन्होंने ही बदली थी। और भी कई स्टार्स हैं जिनके नाम मैं आपको आगे गिनाऊंगा। तो बहरहाल तुमसा नहीं देखा बहुत बड़ी कामयाब हो गई फिल्म, और इसके बाद शम्मी कपूर साहब के साथ ही एक और हिट फिल्म दी इन्होंने।

ये फिल्म ही सुपर हिट। तुमसा नहीं देखा मैं उपिन अय्यर साहब का म्यूजिक और इसमें उषा खन्ना का, और म्यूजिक तो बेस्ट होना ही था साहब। फिर चाहे वो तुमसा नहीं देखा हो या सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रूमाल हो या फिर दिल देखे देखो दिल देखे देखो दिल देखे देखो जी। वेल एक बार फिर से वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी नासिर साहब की कुछ और बेहतरीन फिल्मों की। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा, मुझे बहुत मजा आ रहा है इन गानों को सुनने में भी और ये कहानी सुनाने में भी। सिंगापुर आपको कैसा लग रहा है ये शो हमें जरूर बताएगा, हमारे फेसबुक पेज पर आकर हमें इंतजार रहेगा।

0: नहीं।
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रिशिवल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12, 11th टू 25th सितंबर। शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
3: जीजी
2: क्रिशिवल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
3: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
5: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: डायरेक्टर राइटर नासिर हुसैन साहब स्पेशल शो में आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ। सिंगापुर मेरा नाम है समर और आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009। और आज हम लेजेंड्स फिर से में नासिर हुसैन साहब की बात कर रहे हैं। नासिर साहब की कामयाब फिल्मों का एक बड़ा हिस्सा पंचमदा का म्यूजिक भी था। 7 फिल्में इन्होंने साथ साथ की, सारी की सारी ब्लॉकबस्टर हिट, और म्यूजिक तो इतना कमाल कि जब आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा और आप वाह वाह वाह करते रहेंगे, करते चले जाएंगे। और वैसे भी पंचमदा की म्यूजिक की तारीफ करना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसी बात हो जाती है। तो पहली बार 1967 में पंचमदा ने इनके साथ काम किया था, फिल्म थी तीसरी मंजिल।

शम्मी कपूर अब तक सुपरस्टार बन चुके थे, तो अब नासिर साहब ने कहा कि म्यूजिक पंचम देंगे एसडी बर्मन साहब के बेटे। तो पहले तो शम्मी कपूर बोले कि यार क्यों आप फिल्म को खराब करना चाहते हो हैं? लेकिन फिर जब पहला गाना जो पंचम ने रिकॉर्ड किया वो सुना उन्होंने, तो पंचम दा के वो फैन हो गए शम्मी कपूर साहब और उन्हें गले लगा लिया उन्होंने। इसके बाद पंचम दा के साथ नासिर साहब ने फिल्म बनाई यादों की बारात, इसके बाद हम किसी से कम नहीं, और ये फिल्म तो पूरी ही म्यूजिकल फिल्म थी। एक एक गाना इतना बड़ा हिट के पूछे ही मत, क्या हुआ तेरा वादा, इसके लिए रफी साहब को नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड दोनों अवार्ड मिले थे।

इसके बाद फिर जमाने को दिखाना है, इस फिल्म का म्यूजिक भी जबरदस्त हिट था। और रही बात स्टार बनाने की, तो यहाँ उन्होंने आरडी बर्मन को स्टार बनाया, क्योंकि तीसरी मंजिल ही पंचमदा की पहली फिल्म थी और पहली फिल्म में कमाल करवा दिया नासिर हुसैन साहब ने। आज की आखिरी मुलाकात अभी बाकी है, लेकिन पहले सुनिए आप ये गाने और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद नासिर हुसैन साहब की बची हुई कहानी के साथ।

0: नाचने का मन है।
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 September, 7 p.m. onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now, 8138-2790. Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
4: It's a Musti Partner event.
5: Shamre, ek pal da.

रेडियो मसी 24/7 लाइव बनाज की आखिरी मुलाकात में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ, और आज का शो हमने डेडिकेट किया राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन साहब के नाम। बहुत सारी बातें हमने की, गाने सुने, किस्से सुने, और बहुत सी बातें अभी भी बाकी हैं, लेकिन वक्त उतना नहीं है मेरे पास कि मैं वो सब कुछ आपको सुना सकूं। लेकिन फिर एक मजेदार किस्सा मुझे याद आ रहा है, तो मैं वो जरूर आपसे शेयर करूंगा जाते जाते कि रणधीर कपूर साहब को तो आप जानते ही होंगे। रणधीर साहब राज कपूर साहब के बड़े बेटे हैं और करिश्मा और करीना के पापा। तो ये शुरू से मजाकिया रहे हैं और मजाक मजाक में कुछ भी कह देते। तो एक बार जब नासिर साहब के पास ये बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि नासिर साहब, आप फिल्में तो बड़ी कमाल की बनाते, लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी क्यों होती है? इसमें आप बदलाव क्यों नहीं करते? तो नासिर साहब ने बड़ा मजेदार जवाब दिया उनको कि तुम कितनी बार मेरे घर आ चुके हो? कहने लगे, बहुत बार। तो हर बार तुम बिरयानी ही क्यों मांगते हो, कोई और चीज क्यों नहीं मांगते? तो रणधीर बोले, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है भाभी जान के हाथों की। तो नासिर साहब बोले, मेरी फिल्मों के साथ भी ऐसा ही है, जब लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही है तो मैं दूसरी कहानी क्यों दूं? तो इस तरह के किस्से चलते रहते थे, मतलब हाजिर जवाब थे नासिर साहब। और आज के शो में जाने से पहले मैं नासिर साहब की एक फिल्म का जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि वो दो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी थी, और वो दो लोग हैं आमिर खान और उदित नारायण। नासिर साहब आमिर खान साहब के चचा लगते हैं, और अब तक यानी 1989 तक इन्होंने डायरेक्शन छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने लिखना नहीं छोड़ा था। और वैसे भी अब तक आमिर की कोई हिट फिल्म आई नहीं थी, तो इसे भी अच्छी फिल्म से लॉन्च करना था। तो नासिर साहब ने फिर फिल्म कयामत से कयामत तक लिखी, और ये इतनी बड़ी हिट रही उस साल, सिर्फ इसी फिल्म का नाम था। और साथ में आनंद मिलिंद का म्यूजिक और उदित नारायण के गाए हुए हर गाने इतने बड़े हिट हुए कि क्या कहें आपको। और उदित नारायण साहब की गाड़ी तो इसी गाने से चली थी।

लेकिन मेरी मंजिल यही है सिंगापुर में। बहुत जल्द लौटूंगा आपसे एक और मुलाकात के लिए। अभी दीजिए इजाजत, आज की कहानी यहीं तक। फिर एक मुलाकात से पहले कुछ वादे आपसे चाहता हूं कि आप कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद करें और याद मुझे भी रखिएगा। मेरा नाम है समर, आपसे मिलता हूं यहीं पर। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।

Presley, Jay.

कोकलाची पाकी जुमे रात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकलाची पाकी जुमे रात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकलाची पाकी जुमे रात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शाम।

बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: हाँ, शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे बिल्लो,
2: अरे बिल्लो बोला बिल्लो,
1: जो भी देखे यही पूछ है किसकी जगाती है कयामत कोई।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
1: जोश में रहो।
2: हफीज होशियारपुरी।

0: रात अकेली है,
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
2: जोश में रहो।
3: ये वो हिट पे पिक्चर आ रही है ना,
4: कौन से?
3: बॉडीगार्ड, उसका टाइटल सॉन्ग एकदम फाड़ू है।
5: अच्छा, हीरो कौन है उसका?
6: तेरी

pure voice. I am singing sound. Soup sound. Flop

नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 Live Pe. गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वेलकम। रेडियो मस्ती 24/7 पर 7 बजकर हो चुके हैं 5 मिनट एंड ट्यूजडे मॉर्निंग वाली आवाज जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। दैट इज राइट, ये है मस्ती का मंत्र विद आपकी अंतरा। और सुबह सुबह यही सोचते सोचते जो है आया गया है दैट द डे विल बी जस्ट फाइन। या बस इतना सही, हर सुबह उठ के यू नो ऐसा नहीं होना चाहिए कि घोड़े पे ही सवार हो जाए कि आज तो बेस्ट डे एवर। मतलब यू कैन नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ मूड एवरी सिंगल डे व्हेन यू गेट अप। नहीं बाबा, हर रोज इतना प्रेशर नहीं चलता है। नाउ सम डेज आर फैंटास्टिक, नो डाउट अबाउट इट, यू फील इट राइट, यू हैव दैट स्प्रिंग आपके चाल में ही और आपकी बातों में ही समझ में आने लगता है। सम डेज आर सुपर डुपर प्रोडक्टिव, कुछ दिन थोड़े से स्लो होते हैं, कुछ दिन बस निकल जाते हैं। एंड यू नो व्हाट, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो अगर आज सुबह उठ के आपके पास कोई ग्रैंड प्लान नहीं है, एनर्जी थोड़ी सी कम है, मंडे वाली फीलिंग ट्यूसडे तक स्ट्रेच हो गई है, कोई बात नहीं, एक कप चाय या कॉफी उठाइए, मेरी तो तैयार है यहाँ पर, थोड़ा सा मस्ती मीडिया 24/7 लगाइए और दिन को बस अनफोल्ड होने दीजिए। हो सकता है जिस चीज को लेकर कल तक आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, आज उसका सोल्यूशन मिल जाए, यू नेवर नो। हो सकता है कोई अच्छी न्यूज आ जाए या मे बी नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपेंस, बट यू स्टिल end the day thinking, hi yaar, today was not that great but quite nice. So don't decide the mood for the entire day at 7 a.m. in the morning, isn't it? The day has just begun, give it a chance. Main Antra aapke saath yahan par, I am right here with you, Masti Ka Mantra, music, baatein, kaafi saari masti and sab kuch baat karenge 10 baje tak. You are with me and trust me, the day will be just fine. है ना, कर दिए एकदम इंटेलिजेंट बात। गुड मॉर्निंग।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिब्लिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Shaam ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
2: Healthy khao, protein khao, healthy khao, protein khao.
3: Healthy munching ka perfect partner, aap sirf ek click door.
4: GG.
3: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
4: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंत्रा।
6: आजकल इतनी सारी चीजें जो है इंटरनेट पे दिखती हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पर, बट सम थिंग्स आर रियली रियली इंटरेस्टिंग। आई थॉट दैट यस, आके आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है। 7:00 सुबह के हो चुके हैं 18 मिनट। यहाँ पर हमारी सलमा ज्वाइन कर चुकी है, श्योर नंदा जी ज्वाइन कर चुकी हैं ऑल द वे फ्रॉम जबलपुर। आई डोंट नो सुनील जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप सोते नहीं हो या फिर आप अर्ली राइजर हो, बट वेलकम आप सभी को, गुड मॉर्निंग। आई नो उन सभी को भी जिन्होंने इस वक्त ट्यून कर रखा है। सो आई वॉज गोइंग टू टॉक about this one. Imagine आप किसी busy shopping district में जा रहे हैं and सामने एक massive सा billboard है। Normally क्या expect करेंगे कि कोई actor है, कोई model है, luxury brand है, influencer है, maybe किसी नए product का ad है। But you know what? Several cities in China, prime billboards और giant public screens पर scientists के faces नजर आ रहे हैं and it has gone viral. And I found that idea really, really interesting. Now, this started getting attention in places like Shandong and has since been seen in the cities and regions, jaise Hangzhou ho gaya, Hefei ho gaya, Inner Mongolia ho gaya. So, scientists jo hai, unke jo bade bade billboard pe chehre nazar aayenge, they have been featured along with the information about what they actually contributed. Sabse interesting ye laga that it isn't simply ki you know, China ne sare celebrity ke ads hata diye. That version going around social media, it's a little exaggerated. Reporters ki mani jaye to these are largely public service initiatives with commercial venues voluntarily giving prominent advertising space to the scientists rather than some nationwide order kind of banning normal एडवर्टाइजिंग। दिशा का भी यहाँ पे बिल्कुल मैसेज आ गया कि प्रेजेंट अंतरा, मैं भी यहाँ पे हूँ, वेरी गुड, हाई फाइव दिशा, सुबह सुबह। बट isn't that this idea so cool? जिसको हम बार बार देखते हैं, समवेयर वी स्टार्ट बिलीविंग दैट पर्सन मैटर्स, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट किड्स। सो अगर हर जगह सिर्फ एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड ग्लैमरस लाइफ स्टाइल्स देखेंगे तो नेचुरली वही एस्पिरेशन का पार्ट भी बन जाता है समवेयर, ओके। बट इमेजिन स्कूल जाते हुए रोज एक साइंटिस्ट का जॉइंट फोटोग्राफ देख रहे हैं, नीचे पढ़ते हैं दैट दिस पर्सन हेल्प इन डेवलपिंग हाइब्रिड राइस, somebody else's research transformed malaria ka treatment, somebody worked on country ka space program. So ghar jaake obviously koi bhi hai bachcha to puchega ki kaun hai and want to know more about it, curiosity jaagti hai, conversation shuru hota hai. I don't think so celebrities ko celebrate karna galat hai, that is absolutely fine, but maybe our definition of a celebrity can be a little bigger, just like this one. I completely loved the whole idea of it and I was like ki bhai baat to hai, बनता तो है बात करना। रेडियो मस्ती 24/7 पर चलिए बढ़ते हैं आगे गानों में भी, मेरे बात तो है। गुड मॉर्निंग
7: राधा कृष्ण। हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: उफ उफ, ये गाना एंड द म्यूजिक टू गुड आई टेल यू। 7:31 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में एंड यहाँ पर हो चुका है वक्त कि आपको बताया जाए कि सिंगापुर की सड़कों का हाल चाल कैसा है और मेरे गले का हाल जो है ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग अप इज अ ब्यूटीफुल नंबर फ्रॉम द मूवी प्यार किया तो डरना क्या। अब आंसर आई है तो थोड़ा 90s तो लाएगी ही, चलेगा कैसा मेरा उसके बिना, है ना। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक एंड यस वी विल प्ले समथिंग एंड लेट्स कम बैक।
3: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर एंगेज थिएटर 2 सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
3: मस्ती पार्टनर इवेंट।
4: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
5: भाई सच में जब इन दोनों ने यानी कि राघव और प्राची ने ये बोला कि हम किसी को बैठने ही नहीं देंगे, आई कंप्लीटली बिलीव्ड देम। जब राघव ने उठाया गिटार एंड दे बोथ स्टार्टेड सिंगिंग, आई वाज लाइक ओ यही वो बात है जिसके लिए बिल्कुल सिंगापुर हो रहा है तैयार। रेडियो मस्ती 24/7 ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्रा। एंड यस, बैकस्टेज सिबलिंग्स की बात कर रहे हैं एंड आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस। तो अगर आपने हमारा कल का मस्ती एवी just in case miss kar diya hai, we had this live and exclusive conversation with the backstage siblings Raghav and Prachi. Aap hamare app mein Masti AVI ka jo tap hai niche ekdam aapko right corner mein milega, usko tap karenge and agar Masti AVI pe jayenge to aapko wo jo hai hamara conversation wahan par live mil jayega. And there were so many fun moments as well. I wanted to know ki bhai siblings mein itni synchronous कैसे हो रही है, कैसे चल रहा है ये सब। बट वेल अल्टीमेटली यही प्रूव हुआ कि दे आर जस्ट लाइक एनी अदर सिबलिंग्स, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना पीसफुल कैसे ही चल सकता है। बट वेल ये सारी चीजें एक तरफ, बट देयर सिंक एंड देयर कनेक्शन ऑन द म्यूजिक इज अनदर एक तरफ। तो अगर आप सोच रहे हैं दैट भजन इवनिंग का मतलब बड़ा ही फॉर्मल एंड यू नो ऐसा एकदम बहुत सीरियस टाइप हो जाएगा, नो Absolutely not. We are talking about bhajan jamming. This is about singing together, familiar melodies, bhajans, music, that community wala feeling. Basically, bhakti with a beautiful jamming ka vibe. So well, ये जो है डेट पास में ही आने वाली है, which is coming Saturday, 26th of September, Engage Theatre 2, Suntec में जो है backstage siblings, these guys are gonna be there. If you go to log on to Sistic and go to backstage siblings wala page, you have discounts as well. If you are a student, you get this 10% off standard tickets. And agar family ke saath ja rahe hain, I think this particular group discount is absolutely amazing. So there is this buy 4 and get 2 free family ka promotion for a bundle of 6 tickets. So basically exactly 6 tickets are purchased in one transaction, but usme se 2 free hai. So dosto ko lijiye, family ko lijiye, apni singing voice ko thoda warm up kijiye and come together for this evening of music, bhakti and community with the backstage siblings. I am very very sure, if you don't believe me, go and watch the interview, you will know why I'm saying that, what kind of energy they are going to bring, why इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है अपने मन की बात में व्हाई डिड दे शो देयर क्लिप फॉर भजन जैमिंग, व्हाई डिड ही मेंशन दैट, एंड यू नो देयर इज अ रीजन फॉर दैट, है ना। वेल अगर स्टिल वी हैव अ चांस टू यहां पर टिकट जीतने के, तो मुझे बताइए क्या नाम है हमारे बैकस्टेज सिबलिंग्स का, है ना। मैं चार बार तो यही पे ले चुकी हूँ, अब पता चलेगा कितने ध्यान से मुझे सुन रहे थे। सो वेल, दैट्स द क्वेश्चन ऑफ द डे, सुपर सिंपल। बिल्कुल आपका नाम चला जाएगा लकी पॉट में, एंड यू नेवर नो कि बिल्कुल इतने करीब आकर आज आपका नंबर लग जाए, है ना। 7:43 हो चुके हैं, एंड बढ़ते हैं आगे। अरमान मलिक की आवाज में खाएगा अपने नेक्स्ट इज दिस गाना।

0: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. The Indus presents for Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood come music, energetic dancing, good Indian food, and exciting surprises. Join Kariye Inka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
1: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026, be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique, showcase your business to the community. Plus, live performances, kids' activities, joyrides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. Nacho, nacho, nacho, nacho, nacho. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
2: Har Tuesday, ek naya twist. Masti ka mantra with RJ Antra.
3: Good morning, everyone. Radio Masti 24/7. Antra यहाँ पर आपके साथ चल रहा है मस्ती का मंत्रा. भाई, क्रिकेट की दुनिया से काफी सारी अपडेट्स आ रही है. सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहती हूँ, इफ यू आर अ चेन्नई सुपर किंग के फैंस, तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स जो है उन्होंने ऑफिशियली अपॉइंट कर लिया है फॉर्मर इंडिया के फास्ट बॉलर जहीर खान को एज देयर न्यू हेड कोच फॉर IPL 2027, रिप्लेसिंग स्टीफन फ्लेमिंग. नाउ जस्ट थिंक अबाउट दैट फॉर अ मोमेंट, बिकॉज Fleming and CSK almost became synonymous with each other. Ye bare the coach 2009 mein, and after that long association, 5 IPL titles and years of that stable CSK ka setup, the chapter has finally now closed. Now Zahir jo hai coming in is interesting for another reason. Reports ka mana jaye to kaha ja raha hai MS Dhoni played an important role in the choice, with CSK ka management looking towards Indian coach and someone Dhoni was familiar working with. Zahir Khan jo hai, of course, played alongside Dhoni for India and was a crucial part of the 2011 ka World Cup winning team, finishing the tournament with 21 wickets. Coaching setup mein bhi जहीर खान जो है बिल्कुल नए नहीं है. ही हैज प्रीवियसली वर्कड विद मुंबई इंडियंस के क्रिकेट ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट रोल्स के लिए एंड लेटर मेंटर्ड लखनऊ सुपर जायंट्स. सो दिस विल बी हिज फर्स्ट आईपीएल असाइनमेंट एज हेड कोच. भाई बहुत ही शानदार. इनफैक्ट सोशल मीडिया पे एकदम स्टाइल से अनाउंसमेंट हुई है, लेफ्ट आर्म इज टेकिंग ओवर. वेरी नाइसली डन, आई हैव टू से. सो दिस इज समथिंग न्यू, न्यू कोच, न्यू चैप्टर, बट प्लेंटी ऑफ फेमिलियर क्रिकेटिंग ब्रेन्स in that particular dressing room. CSK fans, क्या लगता है जहीर खान एंड चेन्नई सुपर किंग्स कैसा रहेगा ये कॉम्बिनेशन, वो तो पता चलेगा जब IPL 2027 आएगा और वापस से एकदम धुरंधर वाली बैटल शुरू हो जाएगी. Till then, we just have to wait and watch, isn't it? चलिए फिलहाल wrap up करते हैं ये वाला घंटा with this beautiful number आतिफ असलम की आवाज में. Good morning.

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।